अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अनुराग में, और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनाते हैं आपको बाहरों की मंजिल फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ दी है पूर्णिमा और अमित कुमार ने।

0: सा तो ठीक से लगाओ।
1: सा सा सा सा सा सा सा
0: सा। हाँ, अब गाओ।
2: अरे ये गाएगा क्या, इसके पास बोल तो है नहीं, सिर्फ धुन है।
0: अच्छा तो बोल मैं देती हूँ, जरा धुन तो सुनाओ।

दोस्तों आप आनंद लीजिए इस गीत का और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को भोर सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि यह घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6ठे राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria.

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: Welcome back, listeners. The clock ticks 10:03 and you are listening to 101.9 FM Rainbow, and the show is called Namaste Hello Adab, the perfect blend of your Western hits and Bollywood beats. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे प्रिया बांधवी. आप मुझे प्री करके भी बुला सकते हैं. कैसे हैं आप सब? आई होप आपका दिन सुपर डुपर नोट पर शुरू हुआ हो, क्योंकि आज का दिन स्पेशल है. आप पप्पा ने हम पप्पा को अपना लिया है और पप्पा का आगमन कर लिया है. साथ साथ फेस्टिव माहौल भी हैदराबाद और पूरे देश दुनिया में छा गया है. साल का सेकेंड हाफ शुरू होते ही ऐसा लगता है जैसे कि पूरे फेस्टिवल्स की लाइनअप शुरू हो गई हो. फेस्टिवल्स, फैमिली, फ्रेंड, डेकोरेशन एंड फूड, या पंडाल हॉपिंग और खाना खाना खाना. पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं अपना शो. हियर्स अ ट्रैक कमिंग अप. एंजॉय द ट्यून्स एंड स्टे ट्यून्ड टू हैदराबाद

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। और हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं इस त्यौहार का। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपके घर में क्या ऐसे चीज़ स्पेशल बनता है खाने में त्यौहारों के समय पे। हाय आरजे प्रीत, दिस इज़ दीपू फ्रॉम मेहदीपट्टनम। नमस्ते दीपू जी। गणपति बप्पा मोरिया, हमारे घर में ना गणेश चतुर्थी के दिन तुम्बी भाजी बोल के एक भाजी रहता है, स्पेशली चतुर्थी के लिए ही भेजते हैं और हर साल में एक ही बार आता है। तो हाँ, मैंने भी खाता है। तेलुगु में बोलते हैं तुम्बी कोरा पछड़ी, अच्छा लगता है वो ना, बहुत फ्लेवरफुल वाला लीफ होता है। और गणेश चतुर्थी के दिन हमारे घर में मोदक बनते हैं। घर में जितने मेल मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग गणेश जी, ईच मेल मेंबर के हिसाब से 11 मोदक, यानी हमारे घर में 55 मोदक बनते हैं। मैं, मेरा भाई, डैड, गणेश जी और रॉक्सी। शायद रॉक्सी आपके डॉग का नाम है? हाँ जी, ओके। हाँ, ये ही इज़ ऑल्सो अ फैमिली मेम्बर, राइट? पेट्स आर ऑल्सो आर फैमिली मेम्बर्स। और एक मैसेजेस आया है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। उंड्रालू तो बनता ही है। हाँ, गणेश जी का फेवरेट आइटम है जो खाने के लिए उंड्रालू बनाते हैं हम। और इन सबको बनाने में पूरा एक दिन लग जाता है। सही बात है, उंडालू में बहुत ज़्यादा एनर्जी और एफर्ट तो जाता ही है, उसके साथ साथ टेस्ट भी अच्छा रहता है। थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू शेयर लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू दीपू जी। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बोल रहे हैं पायसम बनता है उनके पास ईद के टाइम पे। और एक मैसेज आया है हमारे पास, नाम नहीं भेजा है उन्होंने, बट उन्होंने कहा है बिरयानी बनता है उनके पास त्योहारों के समय में। सही बात बोला है आपने, खाना तो खाना है, थोड़ा सा एफर्ट लगेंगे बट अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि पूरा घर जब बन जाता है ना, घर बना रखता है उस खाने में बनाने के लिए, तो हमारे फेस्टिव रिचुअल्स के बाद खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चलो इसी बात पे एक और गाना आपके नाम, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9।

पर हम बात कर रहे हैं, हमने गाना सुना है नमो नमो, जो है शिव जी का गाना है, उनके पुत्र गणेश जी के बारे में हम बात कर रहे थे। और अभी गणेश जी का वाहन जी, वो है मूषक जी। पता है आपको गणेश जी ने मूषक को ही अपना वाहन क्यों बनाया है? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग पौराणिक कहानी बताई जाती है। एक पॉपुलर कहानी के अनुसार महिषा मूषिकासुरा नाम के एक पावरफुल असुरा था। वो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण लोगों को परेशान करता था, और फिर उसका सामना हुआ हमारे गणेश जी से। गणेश जी ने मूषिकासुरा के अहंकार को कंट्रोल किया। आखिरकार मूषिकासुरा ने गणेश जी का शरण ले लिया, और फिर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। यानी जो कभी अपनी पावर और ईगो के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो, तो गणेश जी के कंट्रोल में आ चुका है। यानी इस कहानी से हमें एक ब्यूटीफुल मैसेज ये मिलता है कि कभी-कभी हमारे अंदर की एक छोटी मूषक जो होता है, ईगो, ग्रीड, एंगर या ओवर थिंकिंग हो, ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में इधर उधर भगाती है। और जब हमें इन्हें कंट्रोल करना सिखाता है, वही हमारे त्योहार है, वही हमारे अंदर का स्ट्रेंथ होता है। हमारे त्योहार में इतनी पॉजिटिविटी इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम त्योहार को शुरू करते हैं, और वो एक त्योहार से दूसरे त्योहार को चला ही जाता है। चलिए इस मौके पे एक और गाना, आपके नाम हमारे नाम, जो है एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक, जोगाड़ा बाय दर्शन रावल। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। कभी आपने नोटिस किया है, हम लाइफ को एक प्लान की तरह देखते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद प्रमोशन, और फिर एक ऐसी अच्छी सी लाइफ सेटल हो जाना। लेकिन फिर कभी कभी लाइफ खुद ही प्लान चेंज कर देती है। मेरी एक फ्रेंड है, काफ़ी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, रोज़ एप्लीकेशंस भेजना, रेज्यूमे अपडेट करना, इंटरव्यूज़ देना, और फिर वही वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू वाला मैसेज। कभी रिजेक्शन मेल आ जाता है, कभी इंटरव्यू के बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है, कभी एक दो राउंड के बाद रिजेक्ट हो जाना। और एक दिन उसने मुझसे कहा, यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा, कहीं गलत तो किया, कहीं कुछ और इम्प्रूव करने का है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ जॉब की फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है, जब बार बार रिजेक्शन मिलता है ना, तो इंसान धीरे धीरे हम अपॉर्चुनिटी को नहीं खुद को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। शायद मैं गुड इनफ नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों स्टक हूँ। बट थिंक अबाउट इट, क्या लाइफ का एक डिलेड चैप्टर पूरी स्टोरी का एंडिंग हो सकता है? वेल, इसके बारे में और बात करेंगे इस गाने के बाद।

लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके आरजे प्रिय बांधवी। आप मुझे प्री करके भी बुला सकते हैं। बट मैंने पूछा था कि जब हमारी एक प्लान होती है, लाइफ की एक प्लान होती है और लाइफ का प्लान कभी कभी सही हो जाता है, हम ये मानकर चलते हैं कि एवरीथिंग इज़ डिस्टाइंड, तो मैंने पूछा था कि क्या एक डिलेड चैप्टर पूरी स्टोरी का एंडिंग हो सकता है? वेल, नहीं ना। कभी जॉब लेट मिलती हो, कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, कभी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, कभी वो प्लान जिसके लिए हम इतने सारे महीने, इतने सारे साल तक मेहनत करते हैं, वो एक दिन सिंपली बस काम नहीं करता है। और उस वक्त लगता है बस अब क्या करूँ मैं। लेकिन शायद लाइफ का आंसर हमेशा तुरंत नहीं मिलता है, कभी कभी थोड़ा सा धीरे मिलता है, लेकिन आंसर तो मिल ही जाता है। यानी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है और हर तकलीफ का आउटकम मिल जाता है। सबसे ये इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी बात करनी पड़े तो ये है कि अगर आपका फ्रेंड डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा है तो उसे हर बार सॉल्यूशन देना ज़रूरी है? वेल, कभी एक मैसेज के लिए वो वेट करते हैं ताकि उन्हें अच्छा महसूस करने के लिए होता है। क्या हाल है बता, सच में बता,

सही है, आपका हाल सही है। ठीक है, बस ये एक क्वेश्चन पूछने से ना उनका मन हल्का लगता है। क्या पता अगर उन्होंने शेयर करना चाहो, वो शेयर भी कर सकते हैं आपके साथ। तो प्लीज़ याद रखिए कि रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप रिजेक्ट हो गए, एक कंपनी ने आपको सेलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई कंपनी में प्लेस नहीं है। क्या आपका एक प्लान फेल हो गया? तो सारे तो फेल नहीं हुए, अब तक आए हैं, इसके बाद भी चलते रहेंगे। और हाँ, लाइफ को प्यार करना तब इजी हो जाता है जब सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान हो। लेकिन असली चैलेंज शायद तब ही है जब लाइफ आपके स्क्रिप्ट चेंज कर देती है, तब भी कहना पाए ठीक है जिंदगी, प्लान बदल गया लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए सुनते हैं एक अगला गाना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

बात कर रहे थे, जैसे लाइफ में ना हर कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है, जैसा लाइफ चल रहा है उसके हिसाब से हमें भी चलना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी अनसर्टेनिटी के फेज़ में है, जॉब का वेट कर रहे हैं, कैरियर फिगर आउट कर रहे हैं, या बस लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बस आपका एक ऐसा चैप्टर में है जिसका एंडिंग अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, बट एंड तो ज़रूर है। और सब आउटकम पर डिपेंड होता है, हमारे डेस्टिनी पर डिपेंड होता है, हमारे एफर्ट्स पर डिपेंड होता है। और शायद कल कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छा हो, एक फ़ोन कॉल, एक अपॉर्चुनिटी और एक कॉन्वर्जेशन, बस एक नॉर्मल सा दिन जिसमें आप रियलाइज़ करें, अच्छा हुआ मैं रुक गया, मैंने वेट किया और देखिए मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। सो हियर्स द प्लान दैट वर्क फॉर यू माइट नॉट वर्क फॉर एवरीबडी, एंड द प्लान दैट वर्क फॉर एवरीबडी इज नॉट योर्स। वेल, जिंदगी को परफेक्ट होने का वेट मत कीजिए, कभी कभी इम्परफेक्ट जिंदगी को ही प्यार करना सीखना पड़ता है और बोलना पड़ता है, व्हेन आई गेट ओल्डर आई विल बी स्ट्रॉन्गर। कमिंग अप नेक्स्ट इज वेविंग फ्लैग।

Well, listeners, that was Watermelon Sugar by Harry Styles, and I have a question for you. क्या हम सबको और आप सबको बचपन याद है जब घर में कोई फैमिली गैदरिंग होती है और कोई बड़े प्यार से आपसे पूछे, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, डॉक्टर या इंजीनियर? और अगर आपने बोला मुझे नहीं पता, तो तुरंत एडवाइस आ जाती है कि कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग कर लेना। लेकिन सीरियसली सोचिए, इंजीनियर होता कौन है? हम यूजुअली इंजीनियर को इमेजिन करते हैं कंप्यूटर के सामने बैठे हुए, हेलमेट पे कंस्ट्रक्शन साइट पर, या मशीन्स के बीच में काम करते हुए।

लेकिन इंजीनियरिंग की सबसे सिंपल डेफिनेशन शायद यही है कि किसी भी प्रॉब्लम को देखना और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना। और इंडिया में 15 सितंबर को यानी कि आज इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पिरिट को सेलिब्रेट करने का दिन। ये दिन भारत के लेजेंडरी इंजीनियर श्री विश्वेश्वराया जी का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है। इन्वेंशंस है और हैदराबाद वालों के लिए विश्वेश्वराया जी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है क्या है? वेल, हैदराबाद में ना फ्लड्स आए हैं। दिस इज योर हिंट एंड द टेक अवे टू द नेक्स्ट सॉन्ग। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और हम बात करेंगे इस गाने के बाद।

0: Kurbani ka meeta.
1: Shehdood malai.
0: Hyderabad is a grand buffet.
1: And every dish has a story waiting to be told.
0: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
1: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
0: It's not just food.
1: It's culture, history and flavor rolled into one.
0: Jashne Hyderabad.
2: वेल लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। और हम बात कर रहे थे सितंबर 15th यानी आज के बारे में, जो है आज इंजीनियर्स डे मनाया जाता है हैदराबाद में और हमारे इंडिया में और पूरे देश में। लेकिन हैदराबाद वालों के लिए मैंने बताया था कि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय जी का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हैदराबाद की बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1899 में विश्वेश्वराय जी को इंडियन इरिगेशन कमीशन में इनवाइट किया गया था, जहां उन्होंने डेक्कन प्लेट्यू में इरिगेशन सिस्टम्स पर काम किया है। इस दौरान उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा सिस्टम डिज़ाइन किया है और पेटेंट किया है, ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट्स। 1903 में ये गेट्स पहली बार हमारे डैम में, जो पुणे में है, उसमें इंस्टॉल किया गया था। इन गेट्स की खास बात ये थी कि ये रिजर्वायर में पानी के लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करते थे, ताकि स्टोरेज को मैक्सिमम लेवल तक मेंटेन किया जा सके बिना डैम को डैमेज पहुंचाए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, इतना कैसे इंसान कितना सोच सकता है, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और एक बार फिर सोचिए 1903, आज हम सेंसर्स, ऑटोमेशंस और स्मार्ट सिस्टम्स की बात करते हैं, लेकिन हमारे विश्वेश्वराय जी ने उस वक्त ऐसा मैकेनिकल सॉल्यूशन डिज़ाइन करे है जो पानी के लेवल को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सके। इंजीनियर का मतलब ये है शायद कि प्रॉब्लम देखो, सिस्टम समझो और सॉल्यूशन क्रिएट करो। लेकिन जब सवाल ये है कि ये जो डैम पुणे में है, जो आइडिया कामयाब हुआ, क्या वो सिर्फ पुणे तक ही रहा या फिर इस आइडिया ने और भी डैम्स का इन्वेंशन, डैम्स को स्टोरेज करने के लिए इन्वेंशन किया गया, वेल ये जानेंगे हम कि ये पुणे तक ही रहा या और भी उसका इन्वेंशन हुआ और भी ज़्यादा डिज़ाइन में बहुत सारे चेंजेस आए एंड उसको कामयाब रखने के लिए विश्वेश्वराय जी ने क्या किया है। सुनते हैं इस गाने के बाद।

वेल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन और मैं हूँ आपकी आरजे प्री। हम बात कर रहे थे आज इंजीनियर्स डे के बारे में और मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय जी का बर्थ एनिवर्सरी को हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने ये बताया था गाने से पहले कि पुणे में एक ऑटोमेटिक फ्लड गेट्स का इन्वेंशन हुआ था जो हमारे सर ने किया है। वो है, अब सवाल ये था कि ये जो पुणे में डैम था कड़कवासला नाम का, में जो आइडिया कामयाब हुआ है तो वो सिर्फ पुणे तक ही रहा था या और भी आगे बढ़ा था? तो इसका जवाब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं, ये उधर तक ही स्टॉप नहीं हुआ था। कड़कवासला डैम के सक्सेस के बाद इनके सिस्टम को टिगरा डैम, ग्वालियर के बाद में कृष्णराजसागरा यानी केआरएस डैम, मैसूर में भी उसे यूज़ किया गया था। मतलब एक इंजीनियर का सोल्यूशन एक जगह से शुरू हुआ है और अलग अलग जगह की वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन बन गया था। लेकिन विश्वेश्वराया जी की स्टोरी सिर्फ इंडिया तक भी लिमिटेड नहीं थी। हाँ, 1906 और 1907 के पास आसपास ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने उन्हें एडन, जो आज के यमन में है, भेजा है। उनका असाइनमेंट था वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम्स को स्टडी करना और उनकी प्रिपेयर किए हुए प्रोजेक्ट के बाद सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी किया गया है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, एक इंजीनियर को बिल्कुल नए प्लेस पर भेजा जाता है, नई जियोग्राफी, नई रिक्वायरमेंट्स और नई प्रॉब्लम्स। और काम क्या है? वेल, प्रॉब्लम समझो, सॉल्यूशन डिज़ाइन करो। साउंड्स फैमिलियर, राइट? वेल, आज के इंजीनियर्स भी तो एग्जैक्टली इस अप्रोच के साथ ही काम करते हैं। चाहे टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, ट्रांसपोर्ट हो या सॉफ्टवेयर और वाटर मैनेजमेंट हो, प्रॉब्लम अलग हो सकती है लेकिन अप्रोच वही रहती है। ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करिए, डिज़ाइन करिए और सॉल्व करिए। और फिर आता है 1908। ये विश्वेश्वराया वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेते हैं

फॉरेन कंट्रीज़ के टूर करते हैं, इंडस्ट्रियलाइज नेशंस को स्टडी करते हैं और उसके बाद हैदराबाद आते हैं। और यहाँ उनके सामने थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हमारी मोसी रिवर। 1908 में हैदराबाद में डिवेस्टेटिंग फ्लड्स आए थे और उस फ्लड्स के दौरान बहुत नुकसान पहुँच गया था। विश्वेश्वराय जी ने उन इंजीनियर्स में से एक है जिन्होंने हैदराबाद के फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बताती हूँ और इसके बारे में इस गाने के बाद। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ।

0: anyone who loves getting lost in the pages of a good book and wishes others could experience the same joy that you found between those pages? Have you ever found yourself recommending a book to your friends just because you simply felt that this is a must read? What if we told you that you could now share that experience not just with one person but with thousands of listeners? If the thought of your voice bringing a story to life excites you, then this one is for you. FM Rainbow is thrilled to present Read with Rainbow, a brand new initiative that celebrates the joy of reading through the voices of young readers. If you're between 15 to 25 years of age and have a passion to share a good read with listeners across the airwaves, then share us your name and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book, be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। तो हम बात कर रहे थे आज इंजीनियर्स डे के बारे में और सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय जी का बर्थ एनिवर्सरी को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो मैंने बताया था गाने से पहले कि उनका एक इन्वेंशन हमारे हैदराबाद के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा है, जो 1908 में हमारे पास डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए थे मूसी रिवर पे, उसको कंट्रोल करने में। विश्वेश्वराया ने हैदराबाद के फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और फ्लड रिलीफ मेजर्स सजेस्ट किए हैं। उनके नाम का फोकस था फूड कंट्रोल, वाटर स्टोरेज और सिटी की सेफ्टी। और इस ब्रॉडर वाटर मैनेजमेंट एफर्ट के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे रिजर्वायर्स हैदराबाद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्सेज बन गए थे। लेकिन विश्वेश्वराया जी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। 1909 में यानी एक साल बाद वो मैसूर स्टेट के चीफ इंजीनियर बने और यहीं उनका नाम फिर से एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। वही है हमारा KRS डैम, कृष्णराजा सागर डैम। तो KRS डैम का पर्पस सिर्फ पानी स्टोर करना नहीं था, इसने इरिगेशन और वाटर सप्लाई को भी सपोर्ट करना था। मैसूर रीजन के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल था ये KRS डैम। वेल, और शायद इस वाइडर विजन के वजह से विश्वेश्वराया जी को अक्सर कहा जाता था मेकर ऑफ मॉडर्न मैसूर। उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया था, यानी उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एक डैम या एक बिल्डिंग बनाना नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो और सोसाइटी को आगे बढ़ाओ। और उनकी अचीवमेंट्स को 1955 में एक बड़ा रिकग्निशन मिला था, वही है भारत रत्न। तो बचपन में जो सवाल हमसे पूछा जाता था, डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, शायद सवाल गलत नहीं था, बस इनकम्प्लीट था। क्योंकि इंजीनियर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन चूज करना नहीं है, इट्स अबाउट डेवलपिंग दैट माइंडसेट। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। और आज के दिन इंजीनियर्स डे पर, चाहे आप सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, केमिकल या बायोमेडिकल इंजीनियर है, या बस अभी करियर चूज कर रहे हैं, एक सवाल आपसे पूछिए, अगर मुझे दुनिया की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिले तो मैं क्या सॉल्व करूँगा? क्योंकि शायद हर इंजीनियर की सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्रिएशन कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक बेटर सॉल्यूशन होता है। हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल द इंजीनियर्स लिसनिंग। मैं हूँ आपकी RJ प्रिया बांधवी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। इसी के साथ एक गाना हम सबके नाम।

0: अधिकारों के प्रति,
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
0: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
0: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
0: सुनिए सजग भारत
1: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
0: जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है अपने

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। कल शाम को मैं अराउंड 5:30 के आसपास अपने बालकनी पास बैठी थी, लाइक गरम गरम चाय लेके, और सडनली पूरा रूम एक वाइल्ड येलो लाइट से भर गया था। वेल, द गोल्डन लाइट। अरे मैं तो बस पीते पीते ही रुक गई और विंडो के बाहर झांक कर देखा तो पूरी सिटी पर जैसे किसी ने विंटेज फिल्टर लगा दिया हो। कई बार ऐसा हुआ है ये महीने में जहां स्काई पूरा येलो बन गया था, गोल्डन लाइट बन गया था, जैसे बादल से गोल्ड बरस रहा हो, गोल्डन की रोशनी बरस रही हो। सच सच बताओ, आपने भी कुछ नोटिस किया है कि पहले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था? वेल, किया है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और शो के दौरान हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 0402323482। हाँ, यही हमारा व्हाट्सएप का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। तो इंस्टेंटली मैं जब ये नोटिस किया था कि मैं बस ऐसे चाइल्डहुड में चले गई थी, स्कूल के बाद पेपर बोर्ड्स बनाना, बारिश में भीगना, और वो केयर फ्री वाले दिन। हाँ, घर आके होमवर्क करना पड़ता था, लेकिन शाम को खेलने के बाद कर सकते थे, या मम्मी बुलाए तब तक खेल सकते थे। जैसे मैं ये सोच रही थी उस गोल्डन लाइट को देख के कि कैसे हम शाम में आते ही कुछ स्नैक्स खा के बस बाहर खेलने जाते थे, येलो गोल्डन लाइट के साथ क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, पुरानी यादें याद आ गई। फिर बारिश के बादल आ गए थे, हवा थोड़ी ठंडी हुई, और उसके साथ आई वो पेट्रीचर की खुशबू, वही गीली मिट्टी वाली स्मेल जो बारिश शुरू होने से पहले ही हवा में आ जाती है। और ऑनेस्टली, हैदराबाद की बारिश और चाय के साथ तो ये स्मेल एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन कभी सोचा है आपने, बारिश से पहले मिट्टी की खुशबू आती क्यों है, कहाँ से है? क्या मिट्टी को पता चल जाता है कि बारिश आने वाला है, या फिर हवा में कोई सीक्रेट सिग्नल दे रही होती है? चलो जानते हैं इस गाने के बाद। सुनते रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, और मैं हूँ आपकी RJ प्री।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि बारिश से पहले मिट्टी की खुशबू आती कहाँ से है, क्यों है, और उनको मिट्टी को पता चल जाता है कि बारिश होने वाला है, कि हवा में कोई सीक्रेट मैसेज है। वेल एक्चुअली पेट्रीच्योर सिर्फ एक केमिकल नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है जो डिफरेंट कॉम्पाउंड से बना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स में एक है जियोस्मिन, एक ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड जो मेनली सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली स्ट्रेप्टोमाइस बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं। जब सॉयल ड्राई होती है, जियोस्मिन और दूसरे अरोमेटिक कॉम्पाउंड्स मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं। फिर बारिश की बूंदें ड्राई सॉइल पे गिरती है तो इम्पैक्ट से माइक्रोस्कोपिक एयर बबल्स बनाते हैं। ये बबल्स जियोस्मिन के टाइनी पार्टिकल्स को एरोसोल की तरह हवा में ऊपर ले जाते और फिर सीधा हमारे नाक तक। वेल, थोड़ा समझने में मुश्किल है क्योंकि बड़े बड़े शब्द यूज़ किया गया है इस प्रोसेस में, बट ये याद रखिए कि हमारे बारिश से पहले मिट्टी की खुशबू आती है जियोस्मिन से, और जियोस्मिन का कनेक्शन सिर्फ रेन तक लिमिटेड नहीं है। ये कॉम्पाउंड फ्रेश सॉयल, लेक्स और इवन वेजिटेबल्स में भी हम बोल सकते हैं, अरे बारिश की स्मेल आ रही है। और ये एक इंटरेस्टिंग एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन है कि हमारे एंसेस्टर्स रेनफॉल को इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि इससे हमारे क्रॉप्स उगते हैं और बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो हमारे रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है दैट ह्यूमन में हैव डेवलप्ड अ पॉजिटिव एसोसिएशन विद दीज अर्थी रेन रिलेटेड स्मेल्स फॉर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ऑफ कोर्स साइंस हैजंट प्रूवन दैट आवर लव फॉर द पेट्रीच्योर इज लिटरली हार्ड कोडेड इन आवर डीएनए, बट आवर ब्रेन हैज अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू कनेक्ट द स्मेल विद द मेमोरी एंड इमोशन। वेल, समझ जाना हैदराबाद का वेदर आपको बारिश का ट्रेलर दिखा रहा है, उस ठंडी हवा, काले बादल और अचानक से वो मिट्टी सी खुशबू आए। और शायद इसलिए सिर्फ वेदर नहीं होती है, कभी कभी वो एक मेमोरी बन जाती है। बारिश का मौसम हो, कड़क चाय हो, वेल मैं हूँ यहाँ आपकी आरजे प्री, और इस ब्यूटीफुल रेनी वेदर के साथ एक गाना याद आ रहा है मुझे, सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 पर। Thank you.

0: करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन

सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए शत प्रतिशत आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: Welcome back listeners. हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज चुका है 12:11 और हमारे गानों का सिलसिला चाले रखते हैं बस इस कमर्शियल स्पॉट के बाद. सुनते रहिए आकाशवाणी FM Rainbow 101.9.
2: ప్రతిక్షణం మీకు తోడుగా.

0: ಓಟಲ ಜಾಬಿತಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಗ್ರ ಸವರಣ ಎಸ್ಐಆರ್ಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಮುಸಾಯಿದಾ ಓಟಲ ಜಾಬಿತಾ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಪ್ರಚುರಿಂಚಬಡಿಂದಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವೀಕರಣ ದಶ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ವರೆಗೆ ಪೊಡಿಗಿಂಚಾರು. మీ వివరాలు జాబితాలో చెక్ చేసుకోండి. కొత్తగా ఓటర్గా నమోదుకు ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, తొలగింపులకు ఫామ్ 7, ఇతర సవరణలకు అలాగే చిరునామా మార్పిడికి ఫామ్ 8 ను సమర్పించాలి. స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ 2వ దశలో భాగంగా ఈ నెల 12-13 తేదీల్లో అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో మీ బిఎల్ఓలు అందుబాటులో ఉంటారు. పూర్తి వివరాలకు 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. और लिसनर्स, सच सच बताओ, आज दिन भर में आप कितने बार खुल के हंसे हो? एक बार, दो बार, या बस मैसेजेस पर लाफिंग इमोजी के द्वारा हंसे? थिंक अबाउट इट. सुबह अलार्म से लेकर रात के स्क्रीन टाइम तक हम सब एक अलग ही रेस में भागते. ऑफिस का प्रेशर, एग्जाम्स का स्ट्रेस, सिटी का ट्रैफिक, और ऊपर से जब कोई पूछता है और बताओ क्या हाल चाल रहा है, तो मन करता है बोले बस भाई ये स्ट्रेस चलता रहता है. लेकिन वेट, क्या आपको पता है कि हम जब छोटे बच्चे थे तो दिन में कम से कम 300 बार हंसा करते थे, और अब हम बड़े हो गए हैं, एडल्ट्स बन गए हुए, तो बैरली 15-20 टाइम्स, यानी 15-20 टाइम हंसते हैं. मतलब सीरियस होने के चक्कर में हम हंसना ही कम कर दिया. इसलिए तो आजकल के पार्क में लाफ्टर थेरेपी चलता है, जहां लोग एक दूसरे को देखकर बस बिना हाथ बात के हाथ के हा ही करते रहते हैं. अब आप सोचिए, प्री बिना बात के हंसना, वेल ये सोचते होंगे और आप मुझे क्वेश्चन करते होंगे, अरे वियर्ड लगता है यार. पर सुनो, यहाँ आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट. साइंस कहती है कि आपका दिमाग थोड़ा सा भोला भाला है. योर ब्रेन एक्चुअली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन अ रियल लाफ और अ फेक लाफ. आप बस फेक लाफ करो ना, तो दिमाग को लगता है यार ये इंसान आज बहुत खुश है और मैं भी खुश रहता हूँ, और वो तुरंत एंडोर्फिन्स रिलीज कर देता है. हाँ हाँ, वही अपने फील गुड हॉर्मोन्स जो आपके मूड को इंस्टेंट रिफ्रेश कर देते हैं. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, बताती हूँ इस गाने के बाद, तो सुनते रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. और जो गाना मैं बजाने वाली हूँ वो एक म्यूजिकल कॉमेडी बैटल है, सुनिएगा और हंसिएगा.

0: वेल लिसनर्स, आप सुन रहे थे एक चतुर नार जो एक कॉमेडी बैटल वाला गाना है। हम ये गानों का सिलसिला और बातों का जारी रखेंगे बस इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंग दी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई।
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
1: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
2: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
1: It's not just food.
2: It's culture, history and flavor rolled into one.
1: Jashne Hyderabad.
0: Well, the time ticks 12:26 in the studio clock aur hum baat kar rahe the laughter therapy ke bare mein. Did you know? सिर्फ एक मिनट तक खुल के हंसना इज इक्वल टू 10 to 15 minutes ऑफ साइकिलिंग। यस, थोड़े रिसर्चर्स ये बताते हैं कि बस एक मिनट तक खुल के हंस लीजिए, बस वही आपका कार्डियो है। मतलब जो कैलोरी बर्न करने के लिए आप जिम में पसीना बहाते हो, थोड़ा सा वही कम एक अच्छी कॉमेडी क्लिप कर देखना या दोस्तों के साथ हंसना भी हो सकता है। इट इज इक्वली इक्वल। प्लस आपका स्ट्रेस हार्मोन यानी वो कॉर्टिजोल एकदम डाउन हो जाता है उसका लेवल और इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। बस बेसिक वर्ड्स में बता दूँ तो लाफ्टर इज फ्री मेडिसिन विद जीरो साइड इफेक्ट्स। तो अभी क्या करना है? वेल, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लाइफ जैसी भी हो थोड़ा सा हंस लेना चाहिए। जब भी लगे ना कि दिन बहुत हैवी जा रहा है तो बस पॉज कीजिए और अपने दिमाग में कोई सबसे फनीएस्ट मोमेंट याद कर लीजिए, या फिर उस दोस्त को कॉल कर लीजिए जो सीरियस बात को बिना मजाक बना देता है। सो आज का टास्क एकदम क्लियर है। स्माइल अ लिटल, लाफ अ लिटल लाउडर एंड डोंट टेक लाइफ सीरियसली। बकवास बातों को करो इग्नोर और चाय के साथ थोड़ी हंसी को करो एंजॉय। मैं चलती हूँ एकदम मस्त एनर्जेटिक ट्रैक की तरफ। तब तक हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। और मैं हूँ आपकी होस्ट RJ प्री।

वेल लिसनर्स, मैंने आपको पूछा था सॉन्ग से पहले कि कौन सी वो एक्ट्रेस है जिसका आज बर्थडे है, और मैंने हिंट्स भी दिया था. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे, हेलो प्रीत जी, रम्या कृष्णा जी का बर्थडे है या नागार्जुना सर का बर्थडे? सर, मैंने बोला था आज एक क्वीन का बर्थडे है, और आपने सही गेस किया. जी हाँ, आज है द वन एंड ओनली रम्या कृष्णा जी का बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू द अल्टीमेट राजमाता. उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं, साउथ में 3 नंदी अवार्ड्स और तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड उनके नाम है. रोल्स हो गए उनके पेदयापा के नीलांबरी हो या बाहुबली के शिवगामी. उन्होंने इंडियन सिनेमा में फीमेल लीड कैरेक्टर्स की पावर और अथॉरिटी को एक नए लेवल पर पहुंचाया है. उन्होंने बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक 260 से भी ज़्यादा मूवीज में काम किया है. शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हासन और चिरंजीवी जैसे स्टॉलवर्ड्स के साथ शेयर किए हैं. उन्होंने बहुत सारे स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है. उन्होंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, जिसका ग्रेस और एक्सप्रेशन उनके हर रोल और आइकॉनिक डांस नंबर्स में नज़र आता है. बिग स्क्रीन के साथ साथ उन्होंने एक डिजिटल स्पेस में भी काम किया है, वेब सीरीज क्वीन, जो जयललिता जी के रोल के पोर्ट्रे करके क्रिटिकल एक्लेम और ऑडियंसेस का दिल जीत लिया है. विशिंग द टाइमलेस डीवा रम्या कृष्णा जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड ऑन दिस अकाउंट वी हैव अनदर सॉन्ग फॉर आर शिवगामी.

0: ఏది మామా తిండాను పోదామంటే ఏ బిర్యానీయో మండియో అనుకుంటే ఈ అజీ ప్లేస్కి పట్టుకొచ్చినావు.
1: వింటేజ్ బార్స్ అన్ని ఇట్లనే ఉంటాయి మచ్చా, ఎప్పుడు తిన్నదే ఏం తింటావు? ఇక్కడ టమాటర్ కాట్ మస్త్ ఉంటుంది.
0: అదేంది మామా నేను ఎప్పుడు వినలేదు.
1: ఇదిగో ఆర్డర్ వచ్చేసింది, ముందు తిని చెప్పు ఎట్లుందో.
0: కిరాకుంది మామా, ఈ ప్లేస్లు ఈ డిష్లు ఎట్లా తెలుస్తాయి మామా నీకు ఇవన్నీ?
1: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
2: Welcome back listeners, and you are tuned into Akashwani FM Rainbow 101.9. Rainbow ke saath hai life rangin. Sochiye raat ke 12:30 baje, matlab sochiye baje nahi hai, abhi to din ke 12:30 ho ke 20 minute ho gaye hai, lekin sochiye raat ke 30 baje hai aur aapne lights off kar di hai, apna pillow set kiya hai aur khud se kaha bas aaj to time par sona hi hai. 12:30 is not the time, but maybe थोड़े लोगों के लिए है, लेकिन आपका दिमाग डिसाइड करता है कि यही बेस्ट टाइम है एक लाइव शो होस्ट करने का. सडनली आप सोचने लगते हैं कि 3 साल पहले कोलीग के सामने वो ऑकवर्ड बात क्यों बोली थी, मैंने डोर लॉक किया या नहीं, या फिर कल सुबह तक लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें. फैमिलियर लग रहा है? वेल, मैं भी करती हूँ यही. पता है क्या होता है, आप जब अंधेरे में लेटे होते हो तो आपका दिमाग एक अनऑर्गेनाइज थॉट को एक अर्जेंट नोटिफिकेशन बनाता है और उसी तरह ट्रीट करता है. आप दिमाग में 20 टैब्स पे जगल कर रहे होते हो और बस माइंड चिल्ला रहा होता है, ऐसे मत बोलना भाई, सो जा. बस इसी के वजह से आप टॉस और टर्न करते रहते हो और घंटों भर सीलिंग को घूरते रहते हो. लेकिन गेस व्हाट, एक बहुत ही सिंपल 2 मिनट का साइकोलॉजिकल हैक लेके आई हूँ हम सबके लिए. एक झटके में ना सारे टैब्स क्लोज हो जाएंगे और इसे कहते हैं ब्रेन डंप. मुझे इसे ओवरकम करने के लिए एक तरीका पता है जो मुझ पे काम आया है, सोचती हूँ आप पे भी काम आ जाए. शेयर करूँगी बस इस गाने के बाद. बने रहिए आकाशवाणी FM Rainbow 101.9 पर और मैं हूँ आपकी RJ प्री.

ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್, ಆಪ್ ಸುನ್ ರಹೇ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9 ವಿತ್ ಮೀ ಪ್ರೀ. ಸಾಂಗ್ ಸೆ ಪಹಲೆ ಹಮ್ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೇ ಥೇ ಕಿ ರಾತ್ ಕೇ ಏಕ್ ಬಜೆ ಆಪ್ಕಾ ದಿಮಾಗ್ ಕಾ ವೋ ಮಂಕಿ ಜೋ ಛೋಟಾ ಸಾ ಮೂಷಕ್ ಹೈ ಹಮಾರೇ ದಿಮಾಗ್ ಮೇ ವೋ ಇತನಾ ಸೋಚ್ತಾ ರಹತಾ ಹೈ, ಸೋನೇ ನಹೀ ದೇತಾ ಹೈ, ತೋ ಇಸೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೈಸೇ ಕರೇ. ಸೀ, ಜಬ್ ಆಪ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವೋ ಚೀಜ್ ಲಿಖತೆ ಹೈ ಜೋ ಆಪ್ಕೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೇ ರಹೀ ಹೈ, ತೋ ಆಪ್ಕಾ ದಿಮಾಗ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ಓಹ್ ये तो पेपर पे सेव हो गया, अब मैं दिमाग से हटा देता हूँ. ट्राई कीजिए, अब मुझे इस बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचता है हमारा दिमाग. साइकोलॉजिस्ट ने इसे कॉग्निटिव लोड ऑफ करना कहते हैं. बेसिकली आप अपना मेंटल रैम, द रीड एक्सेस मेमोरी को क्लियर कर रहे हैं. तो आज रात पिलो पे जाने से पहले आपको ये कैसे करना है, ध्यान से सुनिए. बिल्कुल फोन्स नहीं, स्क्रीन को देखने से ब्लू लाइट आपके दिमाग को वापस आ जाता है और बोलता है चलो फ़ोन चला लेते हैं 2 मिनट और वो 2 मिनट का 30 मिनट्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता है. तो फ़ोन साइड में रख दीजिए, ओल्ड स्कूल की तरह बस एक पेपर और पेन लीजिए, बस 2 मिनट स्पेंड कीजिए, जो आपके दिमाग में चल रहा है सब लिख दीजिए पेपर पे. कल की टू डू लिस्ट हो, रैंडम वरीज हो, एम्बैरेसिंग मेमोरीज हो, जस्ट राइट इट ऑफ. हैंड राइटिंग या ग्रामर की बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि कोई नहीं पढ़ने वाला है. वो नोटबुक बंद करने का फिजिकल एक्शन आपके माइंड को क्लियर सिग्नल देता है कि चलो ये रात तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने थॉट्स को पेपर पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं. मेरा माइंड तो अभी एम्प्टी रहेगा, मैं आराम से सो सकता हूँ.

इसे कल हैंडल कर लेंगे, आज रात इसे ट्राई कीजिए लिसनर्स, अपने दिमाग को लॉग ऑफ करने की परमिशन दे दीजिए एंड आई एम प्री विशिंग यू द मोस्ट पीसफुल अनइंटरप्टेड स्लीप टुनाइट. Right on that, the next segment is Hello Rainbow. We will start in a short while after this song.

वेलकम बैक लिसनर्स, अभी समय हुआ है 1:05 और हमारा फेवरेट सेगमेंट है हेलो रेनबो का। तो मैं ना कल शाम को मॉल में शॉपिंग करने गई थी, बस फॉर्मल शर्ट्स और थोड़े घर के सामान लेने। लेकिन पता है क्या, अचानक मेरी नज़र ना एक खिलौनों के दुकान पर पड़ी है। वहाँ विंडो डिस्प्ले में रखी थी एक ब्राइट रेड रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार और मेरा मन भागा। मैं वहाँ पूरे 2 मिनट तक उस कार को देखती रह गई। मन इतना जोर से किया ना कि खरीद लेना

चाहिए, अपन डिस्प्ले प्लेस पे रखेंगे, खेलेंगे उसके साथ ऐसे जैसे छोटे बच्चों का होता है बचपन में, जैसे वो कार के लिए जिद करते थे ना, बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आया है। हाँ जी लिसनर, सच सच बताओ कितने बार ऐसा हुआ है कि आप ग्रोसरीज लेने गए और कैंडी सेक्शन दिख गया, चॉकलेट्स दिख गए और अचानक से रुक गए, या फिर ऑफिस के इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे बैठे विंडो के बाहर बारिश देखकर पेपर बोर्ड बनाने का मन किया। सोचिए लाइफ में कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए, ईएमआई का टेंशन हो या ऑफिस का डेडलाइन, हमारे अंदर का वो 8 साल का बच्चा कहीं जाग जाता है, कहीं नहीं जाता है। जब भी थोड़ा सा चांस मिलता है वो तुरंत बाहर आने की जिद करने लगता है, एंड ऑनेस्टली दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। तभी तो गुलजार साहब ने भी एक कितना खूबसूरत लिखा है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तो लिसनर्स, आज का सवाल भी यही है, आपका दिल तो बच्चा है जी मोमेंट कौन सा है? लाइफ का कौन सा चाइल्डिश या इनोसेंट काम है जो आप अभी भी सीक्रेटली करना चाहते हो या करते हो? कॉल कीजिए और बता दीजिए। हमारे नंबर्स है 0402323 0030, 0402323 4821, और एक नंबर है 0402970471। अगर आपका कॉल नहा मिला हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 0402323 4822।

0: हमसे जुड़ने के लिए एक लिसनर तो रेडी है, सुनते हैं कौन है। हेलो।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब प्रीत जी।
0: हेलो, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे।
0: जी, थैंक यू। आप आज का टॉपिक सुने आप?
1: जी मैडम, पहले सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को प्यार भरा सलाम आदाब। अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे और हमारे अंदर का जो बच्चा है उसको हमेशा जिंदा रखे।
0: हाँ जी,
1: जी मैडम,
0: बोलिए आप, क्या है आपका वो दिल तो बच्चा है जी मोमेंट?
1: मेरा दिल बच्चा था और बच्चा है और बच्चा ही रहेगा हमेशा।
0: अभी भी आप चॉकलेट्स वगैरह खाते हो?
1: हाँ, चॉकलेट वगैरह तो नहीं लेकिन बचपने वाली हरकतें हमेशा जिंदा रखता हूँ मैं अपने अंदर। जो बचपन में अगर मुझे कोई गोदी में लेके इधर उधर जाते थे तो तब भी मेरे को लगता अरे कोई मुझे गिफ्ट दिला देगा खाने का या कोई खिलौना, या मेरे पापा जो है तो मेरे लिए रिमोट वाली कार, ये चाइना वाले बंदूक, ये बहुत सारे खिलौने लाते थे। तो मैं बड़ा हुए तक भी मैं जब पापा कुछ गांव को जाते थे कुछ कारोबार के इससे, तो मैं सोचता था अरे मेरे लिए आप तो भी कुछ भी लाना, इन्होंने कुछ भी लाना बोल के हमेशा आज बाकी रहती थी। और आज भी अगर मैं कभी रोता हूँ, कभी समझो उतार चढ़ाव आते हैं ना जिंदगी में, तो मैं अपने आप को समझाता हूँ खुद ही, फिर रोते रोते खुद ही हंस देता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ अरे भाई क्या चल रहा है ऐसा वैसा बोल के, अपने आप को बच्चे बच्चे वाली हरकतें करके मुस्कुरा देता हूँ मैं अपने आप को। एक बचपने वाली फीलिंग, बचपने वाली जो सोच है वो हमेशा मेरे अंदर हमेशा से थी और आज भी है। हम जवान हो गए तो भी बच्चा ही दिल में वो बचपना वाली आदत तो नहीं जाती है।
0: सही सर,
1: बचपन हो या जवानी हो या बुढ़ापा हो, बच्चा दिल तो हमेशा बच्चा ही रहता है। वो कहते हैं ना बूढ़े होने के बाद भी बचपने में वापस चले जाते हैं,
0: जी
1: तो
0: सर,
1: हम अभी हम जवान तो है लेकिन हमारा दिल अभी भी बच्चे वाली हरकतें बिल्कुल थी और कभी खत्म नहीं होती ये आदतें बिल्कुल मेरे लिए। तो मैं तो अपने आप को हमेशा एक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ, कितना भी बड़ा दुख हो कुछ भी हो बस अपने आप को समझाता हूँ, कोई ना समझाए ना समझाए, कोई अपने पास आए या ना आए, मैं अपने आप को ही अपना दोस्त बना के हमेशा एक्टिव रखता हूँ।
0: सही करते हैं सर। बचपना जाना नहीं चाहिए और जाने देना भी नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर
1: बिल्कुल नहीं
0: कॉलिंग।
1: बिल्कुल नहीं, और ये कितने भी बड़े हो जाए इसको जिंदा रखना है और हमेशा एक्टिव रहना है, तो किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, अपने आपने ही वो बचपना जिंदा रखना और अपने आप को ही संभाल लेना चाहिए हमेशा
0: ट्रू सर, थैंक यू फॉर
1: हमारे
0: कॉलिंग इन।
1: जैसा।
0: हमारे अगले कॉलर है, सुनते हैं कौन
1: ये
0: है।
1: तो एक मोहम्मद
0: हेलो।
1: रफी साहब का गाना है, हम भी अगर बच्चे होते।

0: नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: श्योर सर, मैं सर्च करूंगी और मिल जाएगा तो बजा दूंगी आपके लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग इट हेलो रेनबो।
0: शुक्रिया आपने वक्त दिया जी, अल्लाह आपको खुश रखे आबाद रखे।
1: थैंक यू सर। एक और कॉलर है, सुनते हैं कौन है। हेलो, शायद नहीं, कॉल नहीं कनेक्ट हो पाया। कोई बात नहीं, आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं।

उसे खोना भी नहीं चाहिए। हमारे अगले कॉलर हैं, सुनते हैं कौन है। हेलो, शायद कॉल नहीं जुड़ पाया है। हम अपने गानों के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं।

0: लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 और हम हैं हेलो रेनबो पर। हमारे अगले कॉलर जुड़ने के लिए तैयार है, सुनते हैं कौन है। हेलो
1: हाय प्रिया,
0: हेलो रेनबो। हेलो मैम, कैसे हैं आप, कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं दिव्या हूँ। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ और आपका क्वेश्चन आज बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने कॉल किया आपको।
0: जी मैम बता दीजिए।
1: तो आपका क्वेश्चन ये कि दिल तो बच्चा है ना, तो मेरा दिल तो बच्चा है जी का ये है कि यू नो व्हेन एवर आई सी दोस कॉटन कैंडीज, यू नो
0: यस,
1: जो
0: पीच मिठाई।
1: एग्जीबिशन, हाँ पीछ मिटा, आई लव देम, दे आर सो कलरफुल, सो इवन नाउ आई गो क्रेजी व्हेन एवर आई फाइंड आउट देम। एंड अभी मॉल्स में उनको अलग अलग शेप्स में बेच रहे हैं,
0: यस
1: सो
0: मैम,
1: इट्स लाइक ऑलवेज इट कैरीज मी बैक टू माई चाइल्डहुड।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग विद अस।
1: या थैंक यू।
0: वेल, उनका था कि पीच मिठाई, द शुगर कैंडी, किसको नहीं पसंद, बोलिए, सबको पसंद है। और एक और मैसेज आया हमारे व्हाट्सएप पे, बोल रहे कि वर्षम पड़गाने टेरेस मीद के वाली पेपर बोट चेसी वदले वालम, लेकपोते चेतुल चापे वर्षाने ताकने के ट्राई चेसे वालम। అలాగే తర్వాత ఇంకో వచ్చింది, డోర్ బెల్ కొట్టి పారిపోవడం. వెల్, దిస్ ఈజ్ అన్ అల్టిమేట్ మెమరీ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ హ్యాస్ బెన్ త్రూ. అండ్ విత్ అస్ వీ ఎండ్ ఆర్ హెలో రెయిన్బో సెగ్మెంట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ ఆర్జే ఈజ్ రెడీ. బోల్ రే థే కి హమ్ హమ్ హమే వో సుంతే హే ఆయే హే హమారే న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్ కే ద్వారా, కి మనే పూచా కి ఆప్నే హమారా షో సునా, తో బోలే సుంతే హే ఆయే. క్యా బోల్నా చాహతే హో రాజేష్ జీ?
2: जस्नी हैदराबाद एंड डबल कमेटा और फिट इंडिया।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। सामाइन, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:30 हो चुके हैं। अब पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नायरंग। जी हाँ सामाइन, प्रोग्राम नायरंग का आगाज़ हुआ चाहता है, तो चलिए प्रोग्राम नारंग के आगाज़ के साथ

सामाइन प्रोग्राम नैरंग का आगाज हुआ चाहता है। सामाइन, आज की तेज रफ्तार और मुसलसल मसरूफ जिंदगी ने इंसान के सब्र व बर्दाश्त और जज्बात पर काबू रखने की सलाहियत को वाकई मुतासर किया है। जब हर काम फौरी और एक क्लिक पर होने की आदत पड़ जाए तो जहन आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ार और तहम्मुल का आदी नहीं रहता। इस बेसब्री और बढ़ते हुए जज्बाती दबाव को संभालने के लिए चंद बुनियादी बातें हम आपके रूबरू रखना चाहेंगे। फौरी रद्द अमल के बजाय वक्फा। किसी भी नागवार बात या गुस्से की हालत में फौरी जवाब देने के बजाय चंद सेकंड का वक्फा लें और गहरी सांस लें। ये मुख्तसर सा वक्त दिमाग को जज्बात के बजाय अकल से सोचने का मौका देता है। डिजिटल डिस्टोरेशन से दूरी। सोशल मीडिया पर मालूमात और वीडियोस का तेज़ रफ्तार बहाव हमारे आसाब को मुस्तकिल बेचैन रखता है। दिन में कुछ वक्त मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहकर जहन को सुकून देना बेहद ज़रूरी है। हमदर्दी का रवैया, एम्पैथी। ये बात याद रखना कि हर इंसान किसी न किसी अंदरूनी दबाव या परेशानी से गुजर रहा है। हमें दूसरों के तल्ख रवैयों पर दरगुजरने का हमदर्दी का जज्बा रखना है। जिंदगी में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। इस हकीकत को कबूल करना कि हालात हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे नफ्स से ज़्यादा जहनी तनाव को ख़त्म कर देते हैं। सब्र और बर्दाश्त कोई ऐसी सिफत नहीं जो खुद ब खुद कायम रहे, बल्कि ये एक रोज़मर्रा की मशक हैं जिसे हर दिन थोड़ी तवज्जो और खुद आगाही के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। समाइन प्रोग्राम नए रंग के आगाज़ पर कुछ अच्छी बातें हमने आपको बताई जिन पर अमल करके आप अपने जज्बात पर काबू रख सकते हैं। तो चलिए इसी अच्छे मशवरे के साथ प्रोग्राम नैरंग का आगाज़ करते हैं और आगाज़ पर हम आपको सुनवाएंगे हरफ ताबिंदा। तहरीर व पेशकश होगी मोहतरमा आयशा बतुल की। इसके बाद बेदारी कायनात सिलसिले के तहत शजरकारी उनवान पर डॉक्टर सबीहा नसरीन अपनी तकरीर पेश करेंगी। गीत सुरीले गाता जा इस सिलसिले का आगाज़ होगा जिसमें जिसके दौरान हम आपको बताएंगे कि आज दूरदर्शन डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। इस बारे में बातें हम आपसे करेंगे और साथ ही वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे के बारे में भी बताएंगे और बातों के साथ साथ सुनेंगे कुछ सुरीले नगमे। तो बने रहिए हमारे साथ नैरंग प्रोग्राम में और सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम नैरंग की।

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवर और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

0: दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। शायरी एक एहसास का नाम है जहां दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है। सामईन, इस बार भी हम लेकर आए हैं आपके लिए शानदार मुशायरा, तो सुनना न भूलें डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक की निजामत नवनकदा ये मुशायरा 17 सितंबर को रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के 101.9 FM पर।
1: नायरंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। प्रोग्राम के इस हिस्से में अब आइए सुनते हैं बेदारी कायनात इस सिलसिले के तहत शजरकारी प्लांटेशन उनवान पर डॉक्टर सबीहा नसरीन की ये तकरीर।
2: शजरकारी, शजर अरबी में झाड़ को कहते हैं। हम सब जानते हैं दरख्तों की इस कायनात में क्या अहमियत है, इंसानों की जिंदगी में दरख्त क्या किरदार अदा करते हैं। एक शेर है, जो फूल और फल दे, जो फूल और फल दे खुशबूए जिंदगी दे, जो फूल और फल दे खुशबूए जिंदगी दे, ऐसा निहाल खुशतर हाथों से हम लगाएं। दरख्त बेशुमार हैं, जो फूल और फल देता है वो दरख्त बहुत ज़्यादा हमको अजीज होता है। तो दोस्तों, दरख्त लगाना क्या है? दरख्त लगाना बहुत बड़ी नेकी का काम है। आएंगी काम नेकियां ही, आएंगी काम नेकियां ही, हमको करना है नेकियां ही। कल ही मैंने ये शेर कहा है, खुशनसीब लोग लम्हा लम्हा नेकियां कमाते रहते हैं, और जिसके हाथ से दरख्त लग जाए समझ जाइए वो नेक इंसान है। बास लोगों के हाथों से दरख्त लगता ही नहीं, लग भी जाए तो पनपता नहीं। यानि इंसानों को परखने की एक कसौटी भी है ये शजरकारी। इन दिनों सहन के घर बहुत ही कम हो गए हैं, जिसकी वजह लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं। नेचर से दूरी सेहत पर बुरा असर मुरतब करती है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त हम उगाएं। घर में जगह ना हो तो फिर कुंडों में ही सही कुछ ना कुछ दरख्त लगा ही लें। अक्सर लोग अपने आंगन में तुलसी के दरख्त लगाते हैं। तुलसी का जिक्र कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में भी आया है। तुलसी को अरबी में रैहान कहते हैं। सूरह

आसमान में इसका जिक्र है। ये वाहिद दरख्त है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसे में इस दरख्त को हर घर में होना चाहिए। मेरे घर में तो है, आप लोग भी इसको लगा लीजिए, फायदे में रहेंगे। गुलाब का फूल किसको पसंद नहीं होता, हर किसी को गुलाब पसंद आता ही है। अब आपके घर में सहन ना भी हो तो गुलाब और तुलसी के दो कुंडे तो आप लोग रख ही सकते हैं। आंगन हो तो फिर जो चाहे दरख्त आप लोग लगा सकते हैं। नीम के दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, इसकी हवा सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। इमली के दरख्त की हवा अच्छे खासे सेहतमंद लोगों को बीमार कर देती है। मेरी नानी अम्मी कहती थी, नीम हंसे पीपल रोए, इमली का घर कभी ना बसे। इमली के दरख्त आबादी से दूर होने चाहिए। और दरख्तों के बेशुमार काम हैं, बरगे दरख्तान सब्स दर नज़रे हुशियार, हर वरक़े दफ्तरीस्त मारिफते किरदगार। एक पत्ता, सिर्फ एक पत्ता आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जहां पर पहुंचना हर कस और नाकस के बस की बात नहीं है। यानी हर पत्ता एक दफ्तर है। ज़रूरत सिर्फ नज़र की है। काबिले मुबारकबाद हैं अहले नज़र, काबिले रश्क हैं अहले दिल। अगर हम एक पत्ते पर गौर करें तब हम इरफान हासिल कर सकते हैं, मारिफत की मंजिल तय कर सकते हैं। गरज पत्ता, फूल, फल, तना, जड़, गरज हर चीज़ काम की होती है। लकड़ी जलाकर हम खाना पकाते हैं, लकड़ी पर बना खाना मज़ेदार होता है, सेहत के लिए बहुत मुफीद भी होता है। लकड़ी से फर्नीचर बनता है, लकड़ी से दरवाज़े, खिड़कियाँ, फर्श, छत, सब कुछ हम तैयार होते देख रहे हैं। इतनी कारामद चीज़ के बारे में हम इतनी लापरवाही कैसे बरत सकते हैं। सब झाड़ कटाकर लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनवा रहे हैं। ज़मीन पर ये बोझ बहुत महंगा पड़ेगा। हमा मंजिला इमारतें जलजलों को दावत दे रही हैं। पानी का मसला, बिजली का मसला, लिफ्ट का मसला, किस नहज पर चल रहे हैं लोग अंजाम से बेखबर। सब दौलत के पुजारी दौलत के पीछे भाग रहे हैं, जबकि दुनिया की बेहतरी का जिसको ख्याल है उनको शजरकारी की तरफ ख़ास तवज्जे देना चाहिए। जितने ज़्यादा शजर होंगे उतने ही ज़्यादा हम फ़ायदे में रहेंगे। ये काम सवाबे जारिया में शुमार होता है। जब कोई हमारे हाथ के लगे झाड़ से फ़ायदा उठाएगा तो उसका सवाब हमको मिलेगा। कायनात में कितना हसीन रंग भरते हैं ये पेड़ पौधे। हरा रंग वैसे भी आँखों को ठंडक देता है, बिनाई को तेज़ करता है। कहने और सुनने से ज़्यादा इंसान खुद तजर्बा कर ले, ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक झाड़ लगाएं, फिर वो झाड़ लग जाएगा तो आपको बेहद खुशी होगी। शुरुआत में पत्ता पत्ता आप गिनने लग जाएंगे, जैसे जैसे वो बड़ा होगा आपकी खुशियाँ भी वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। सच कहूँ तो वो झाड़ आपको अपनी औलाद जैसा अजीज हो जाएगा। ये पौधे, ये बेजुबान जानवर हर किसी को औलाद जैसे अजीज हो जाते हैं, खुसूसन जो लोग

एक मुल्क से दूसरे मुल्क घूमते फिरते रहते हैं। उनको ये पौधे और ये बेजुबान जानवर बेहद याद आते हैं। उनका मन किसी चीज़ में नहीं लगता। वो जल्द अज जल्द लौट कर अपने पेड़ पौधों और बेजुबान जानवरों के पास आ जाते हैं, खुसूसन बकरियां, बिल्लियां और मुर्गियां। बहुत मोहब्बत करते हैं। इनको पालो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर बेहतरीन जानवर हैं। हर पैगंबर ने बकरी पाली है। आज तक मैं इसका राज ढूंढती हूँ। आखिर किस लिए अल्लाह सुबहाना ताला के मखसूस बंदों ने बकरियाँ पाली? मैंने भी पाल रखी है, वजह जानने के लिए। बकरी पालोगे तो फिर उसको खिलाने के लिए आप पौधे भी लगाएंगे, घास भी उगाएंगे। बहरहाल, शजरकारी के बेहिसाब फायदे हैं। उस पर गौर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। मेरे दादा हुजूर ने एक आम का पेड़ लगाया और बशीर मामड़ी के नाम से वो दरख्त सारे गांव में मशहूर हुआ। उसके आम में ऐसा मज़ा आता था जैसे दूध मिला हो। हम बचपन में ख़ास तौर पर वो आम खाया करते थे। गांव से ख़ास तौर पर अब्बा हजूर हमारे लिए वो आम मंगवाया करते थे। इस बात के कहने का मतलब ये है कि आपकी नेकी आपकी औलाद के सामने आती है और आपका हर अमल आने वाली नस्लों के लिए एक दर्स है। तो फिर ऐसे काम करें कि नस्लें दुआएं दें। कागज़ भी तो लकड़ी से ही बनता है। कहाँ कहाँ शजरकारी के फायदे हैं, सोचो तो हम गिनते गिनते थक जाएंगे। तो दोस्तों, आज से झाड़ों को काटना बंद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और आने वाली नस्लों की दुआएं लें। अदब में भी पत्ता, फूल, फल, डाली, बीज, हर लफ्ज़ का खूब खूब इस्तेमाल हुआ है। पत्ते पत्ते में खुशबू है फूलों सी। ये गुलशन है या हार? मेरा वतन है, मेरा चमन है, इससे मुझको बेहद प्यार। ये शेर मैंने लंदन में लिखा, जब मैं तुलसी ढूंढते ढूंढते थक गई। आखिर को मेरी जस्तजू रंग लाई और मेरी एक दोस्त लाकर मुझे तुलसी का पौधा तोहफे में दे गई। तो सोचिए आप लोग के दरख्तों की कितनी अहमियत है और हमारे मुल्क में कितने अच्छे अच्छे दरख्त हैं जो कहीं और नहीं होते। जैसे तुलसी है, नीम है, पीपल है, बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जो सिर्फ हमारे ही मुल्क में उगते हैं। हम शीर शकर बनकर थे, फिर से शीर शकर बनकर रहेंगे। तुम दाग लगाना, हम दागों को फूल बना देंगे हर बार। फूल का लफ्ज़ किस तरह इस्तेमाल हुआ है, यानी झाड़ की हर हर चीज़ पर हमको अदब में बेशुमार अशआर मिल जाते हैं। जैसे मीर ने कहा था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। हज़रत सैयद अमीरुद्दीन शाह मीरा जी शम्सुल्लाह रहमतुल्ला अलैह ने ज़ुबान को किस तरह इन फूल पौधों से और फल से तशबीह दी है, आप मुलाहजा करें। हैं बोल अरबी कीरे और फारसी भूत तीरे, ये हिंदी बोलूं सब इस अर्थों के सबब। यानी हमारी ज़ुबान को उन्होंने हिंदी कहा है, पता नहीं उर्दू इसका नाम कब पड़ गया। ये कोई अच्छे खासे इस बयान कीरे प्यासे, वे अरबी बोल ना जाने ना फारसी पिछाने।

देखत हिंदी बोल, पन माने हैं नपतोल, कड़वे पंसू रस, फल पाके जूं फनस। यानी फनस एक ऐसा मेवा है जिसमें कई मेवों के मज़े मौजूद हैं, तो उन्होंने हमारी ज़ुबान को फनस कहा है। ना देखत बुरा लिखो, ले मग्स चाक देखो, जे मग्स मीठा लागे तो क्यों मन उस्ते भागे, त्यों इसमें अर्थ पंच, सब पुराण की रे बीच, वो मग्स माने ल्यू, सब जाले झाड़ द्यो, या वो देखे झाड़ा, इस माटी का पसारा, ना माटी उसकी हान, वो राखे सिमेट आन, ये छान सोना लेवें और बाजे नाक देवें, त्यों भाका माटी जानो, दुर माने दिल में आनो, है करोड़ों कीरा हीरा, घोड़ा पर पड़िया नीरा, कोई सुभान भागों पावें तो क्यों ना ले उचावें, घुड़ भाका छोड़ दीजिए, चुन माने मानिक लीजिए, इसका मग्स दरिया, जे देखत नित रहे भरिया, सब हीरों कीरी कान, ना मोतियों कीरी वान, जे गवास बूद सेवे तो सालिम सौदा लेवे, जो होवेगा मच्छारा क्या जानेगा बिचारा। यानि जो मच्छेरा होता है वो समंदर के बाहर से जाल फेंक कर मछली निकाल लेता है, लेकिन जो गवास होता है वो समंदर की तह में जाकर गौहर ढूंढ लाता है। यानि अगर हम कायनात पर गौर करें तो हमको पता चले कि शजरकारी की हमारी ज़िंदगी में क्या क्या अहमियत है। वो ढोवे बंसी जाल, उस मच्छों की राकाल, दो चार भागों पावे तो कुड़ भून खे कहे नमावे, वो मछारे का भाग, ये गवासी का लाग, रेती कोई न जावे, भाग सा रखे पावे, अनमा कीते भी कहे, सुन दूरी देखा देखी, ना पिंजर ना वो जाल, ना बंसी ना वो माल, बेफहमो देखन आवे तो एक बट्टी ना पावे। तो फिर हमको गवास की तरह समंदर की तह से अगर मोती निकालना है तो कायनात का बहुत बहुत गौर से हमको मुतालया करना चाहिए, और आप देखेंगे कि सारी कायनात में ये पेड़ पौधे बेहद बेहद अहम हैं, बल्कि कायनात में इससे जो हुस्न है, जो रंग व नूर है, जो कैफियत है, यानी अगर आप एक पागल को भी अच्छे अच्छे झाड़ों के दरमियान रख देंगे तो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो जाएगा। ये आज़माया हुआ फार्मूला है, कितने लोग हैं जो ऐसे मरीज़ों के इलाज के लिए बेहतरीन झाड़ लगाते हैं और उनके ख़ास तौर पर इलाज में ये झाड़ बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। आप किस किस नुक्ते नज़र से गौर करेंगे, आपको हर पहलू से शजरकारी के फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आते जाएंगे। तो फिर हम ये तय कर लें कि झाड़ लगाना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना के सांस लेना। जब आप सांस की बात लें तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और झाड़ ऑक्सीजन मुहैया करने वाले हैं। तो फिर किस किस पहलू से आप गौर करेंगे और इस पर अपना कीमती वक्त देकर बेहिसाब झाड़ लगाने की कोशिश करेंगे ताकि ये दुनिया जन्नत का नमूना बन जाए। जन्नत आप सब जानते हैं, स्वर्ग जिसको कहते हैं, तो ज़ाहिर है वो बहुत से दरख्त वहाँ पर होते हैं, और शजर-ए-तूबा तो एक ऐसा दरख्त है कि जिसके पत्तों में से

0: ऐसी मौसीकी आएगी जो आपने कभी ना सुनी होगी। वैसे फूल तो खुशियों का इजहार भी है, इसके लिए मैंने एक गज़ल लिखी थी, चमन में सैर की खातिर। चमन में सैर की खातिर जो गुल अज़ार आए। गुल अज़ार यानी ऐसे माशूक जिनके रुखसार फूलों जैसे हैं। खराज हुस्न अदा करने बरगोबार आए। बरगोबार यानी पत्ते और फल। चमन में सैर की खातिर जो गुल अज़ार आए। खराज हुस्न अदा करने बरगोबार आए। हरी मिनास की मौजिस नुमाइयों के रुमूज अगर कहें तो किसी को ना एतबार आए। सुरूर तूर के जलवे से है जिन्हें हासिल वो सजदगाह मोहब्बत में बेकरार आए। जो हर्फ व सौत की बंदिश न कर सके अंगेज ख्याल आरिज़ व गेसू में अश्क बार आए। गुले सबद है ये नसरी का शेर चुन लीजिए हमारे तर्ज सुखन से कभी ना आर आए। गुले सबद यानी फूलों में जो हुस्न होता है तो फिर शायरी को भी इस तरह तशबीह दी जाती है कि शायरी है कि फूलों का गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में सबसे ऊंचा और सबसे नुमायां फूल जैसे ये शेर है। तो आप देखिए कि ये खुशी जो हम किसी को एक फूल देते हैं तो हम कितनी खुशी महसूस करते हैं, तो ये खुशी भी हमको झाड़ों ही से तो हासिल हुई है। तो ऐसे में शजरकारी की अहमियत पर बार बार गौर कीजिए और बेहिसाब झाड़ लगाने की कोशिश भी कीजिए।
1: बेदारी कायनात सिलसिले के तहत डॉक्टर सबीहा नसरीन बहुत ही खूबसूरत शायराना अंदाज में शजरकारी की अहमियत बता रही थीं। जी हाँ सामाईन, दरख्त लगाना यानी शजरकारी सिर्फ ज़मीन में पौधा बोना नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को एक शादाब और सेहतमंद मुस्तकबिल का तोहफा देना है। दरख्त लगाने के कुछ अहम फ़ायदे यहाँ पर हम आपको बताएंगे। दरख्त फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके साफ़ ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और बढ़ते हुए दर्जे हरारत को मोतदिल रखते हैं। हर वो इंसान, जानवर या परिंदा जो दरख्त के साए, फल या लकड़ी से फ़ायदा उठाता है उसका सवाब पौधा लगाने वाले को मुसलसल मिलता रहता है। ज़मीन की निगहदाश्त, दरख्तों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बरकरार रखने में मदद करती हैं। अपने घर, गली, स्कूल या माहौल के लिए मुकामी मौसम के मुनासिबत से पौधों का इंतखाब करें। पौधा लगाने के बाद उसके बाकायदा देखभाल, हिफाजत और पानी देने की जिम्मेदारी लें। खुशी के ख़ास मौक़ों और यादगार अय्याम पर कम अज़ कम एक पौधा लगाने की रिवायत कायम करें। आज का बोया हुआ एक छोटा सा पौधा कल का घना दरख्त बनता है, जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी सुकून और आसानी का सामान लाता है। मेहनत और देखभाल का ये सफ़र आगे चलकर बेशुमार फ़ायदों से बदल जाता है। तो दरख्त लगाने शजरकारी की अहमियत को समझें सामाइन, और अपनी आने वाले नस्लों के लिए, उनके फ़ायदे के लिए सोचें और कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद।
2: FM Rainbow 101.9

प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर एस जी विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।

प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर एस जी विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।

नए रंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। और अब हम आपको बता दें, नए रंग प्रोग्राम के उस हिस्से में हम अब दाखिल हो रहे हैं जहां पेश होता है प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। जी हां सामाइन, हर शब नए रंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाता जा। इस सिलसिले के तहत सुरीले नगमे पेश किए जाते हैं और किसी ख़ास मौजू पर, ख़ास उनवान पर गीत सुनवाए जाते हैं। तो उसी सिलसिले को लेकर सामाइन हम हाजिर हैं। आज का जो हमारा उनवान है सामाइन, आज 15 सितंबर है और 15 हर साल 15 सितंबर को भारत में दूरदर्शन दिवस यानी दूरदर्शन डे मनाया जाता है। और साथ ही 15 सितंबर को बैनुल अख्वामी जमहूरियत का दिन भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन दो अहम उनवानात के तहत हम आपको इनकी अहमियत के बारे में बताएंगे और साथ ही सुरीले नगमे भी समाप्त करेंगे। तो चलिए सामाइन, इस खूबसूरत सिलसिले का आगाज़ करते हैं। दूरदर्शन डे, इसकी अहमियत के बारे में पहले हम जानेंगे। ये दिन भारत के सरकारी टेलीविज़न नेटवर्क दूरदर्शन की याद में मनाया जाता है। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की नशरियात का आगाज़ हुआ और ये दिन इस तारीखी लम्हे की याद दिलाता है। दूरदर्शन ने भारत की जबानों, तहजीबों और रिवायात को अवाम तक पहुंचाया। देही इलाकों में तालीम, सेहत और समाजी आगाही के प्रोग्राम नशर किए गए। यादगार प्रोग्राम्स में रामायण, महाभारत, मेलेडी मेकर्स और चित्रहार जैसे प्रोग्राम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। दूरदर्शन ने मुख्तलिफ रियासतों और ज़बानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा। दूरदर्शन ने हमें याद दिलाता है कि मीडिया सिर्फ तफरी नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और आगाही देने का ज़रिया भी है।

मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त में, गीत सुरीले गाता जा, ये सिलसिला जारी है। और साथ ही हम आपको बता रहे हैं आज के दिन की अहमियत के बारे में। आज के दिन की अहमियत है, आज के दिन यानी 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन का आगाज हुआ था। इब्तदाई हैसियत, इब्तदा में ये एक तजुर्बाती टेलीविज़न सर्विस थी। दूरदर्शन का मतलब तकरीबन दूर से देखना है, और इसके आगाज़ का मकसद यही था कि तालीम, मालूमात, ख़बरें, सकाफत और तफरी को अवाम तक पहुंचाया जाए। वक्त के साथ दूरदर्शन ने मुल्क भर में अपना नेटवर्क फैलाया और भारत के बड़े सरकारी नशरियाती इदारों में शामिल हो गया। दूरदर्शन की रंगीन नशरियात, भारत में दूरदर्शन ने 1982 में रंगीन टीवी नशरियात शुरू

खास तौर पर एशियन गेम्स के दौरान दूरदर्शन की अहमियत नुमायां हुई। दूरदर्शन ने कई दहाइयों तक भारतीय अवाम को खबरें, तालीमी प्रोग्राम, खेल, ड्रामे और सकाफती प्रोग्राम्स फराहम किए। दूरदर्शन की मौजूदा हैसियत दूरदर्शन प्रसार भारती के तहत काम करता है।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz, जिसमें नायरंग प्रोग्राम पेश हो रहा है। और प्रोग्राम नायरंग में गीत सुरीले गाता जा सिलसिला जारी है, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं सुरीले गीत और साथ ही कुछ मालूमाती बातें आप तक पहुंचाते हैं, और साथ ही गीतों के मुताल्लिक कुछ अहम मौजूआत पर बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम, जो कि पेश होता है नायरंग प्रोग्राम में, और जिसे आप सुन सकते हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर हर शब 9:30 पर।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में दोस्ताना फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz, जहां सुरीले गीत पेश किए जा रहे हैं और साथ ही आज के दिन की अहमियत आपको बताई जा रही है। आज के दिन की अहमियत ये है कि आज 15 सितंबर को दूरदर्शन डे मनाया जाता है, और साथ ही हम सुनेंगे आज के दिन की अहमियत के बारे में। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी आज ही के दिन मनाया जाता है। बने रहिए हमारे साथ।
1: FM रेनबो 101.9

15 सितंबर 1959 को शुरू होने वाली एक छोटी तजुर्बाती टीवी सर्विस ने आगे चलकर भारत के सबसे बड़े और तारीखी नशरियाती नेटवर्क्स में से एक की शक्ल अख्तियार की। इसी तारीखी आगाज की याद में 15 सितंबर को दूरदर्शन डे के तौर पर याद किया जाता है। 1959 तजुर्बाती तौर पर दूरदर्शन टीवी नशरियात का आगाज हुआ। 1965 को बाकायदा रोजाना टीवी सर्विसेज शुरू हुई और 1972 ईस्वी में यानी 1972 में टीवी सर्विसेज को दिल्ली से बाहर दीगर शहरों तक फैलाया गया। साइट 1975 से 76 सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के जरिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से देही इलाकों तक तालीमी प्रोग्राम पहुंचाए गए। 1982 यानी 1982 रंगीन टीवी नशरियात का आगाज हुआ। इसी साल एशियन गेम्स की रंगीन नशरियात ने दूरदर्शन की मकबूलियत से नुमाया इजाफा हुआ। 1980 से लेकर 1990 की दहाई में दूरदर्शन के ड्रामों, खबरों, फिल्मी प्रोग्रामों और खेलों ने पूरे मुल्क में बड़ी मकबूलियत हासिल की।

0: मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, ये था फिल्म का नाम जिस फिल्म से ये गीत लिया गया था और इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने। आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा, और गीत सुरीले गाता जा नायरंग प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। गीतों के साथ साथ कुछ मालूमात पर मबनी बातें भी आप तक पहुंचाई जाती हैं और साथ ही साथ गीत भी सुनवाए जाते हैं। तो हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए सामाइन नायरंग प्रोग्राम में, और बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर।
1: FM Rainbow 101.9।
0: हमारी बात आपसे हो रही है दूरदर्शन डे के उन्वान के तहत। दूरदर्शन ने सिर्फ तफरी ही नहीं बल्कि तालीम और अवामी आगही में भी अहम किरदार अदा किया। स्कूल के तलबा, किसानों, देही आबादी और आम शहरियों के लिए तालीमी और मालूमाती प्रोग्राम्स नशर किए गए। एक तवील अरसे तक दूरदर्शन भारत के करोड़ों लोगों के लिए टेलीविज़न की बुनियादी ज़रिया मालूमात और तफरी था। इसने भारतीय ज़ुबानों, सखाफत, मौसीखी, फ़नून और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने में भी किरदार अदा किया। आज दूरदर्शन का नेटवर्क पहले के मुकाबले में बहुत वसी है और टेलीविज़न के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी मवाद पेश करता है। इसके मुख्तलिफ चैनल्स खबरें, खेल, तफरी, तालीम और

किशोर कुमार को आपने सुना, और फिल्म थी प्रियतमा, और बोल थे कोई रोको ना। जी हाँ समाइन, सुरीले नगमों का ये सिलसिला जारी है, गीत सुरीले गाता जा मैं, और साथ ही कुछ मालूमात पर मबनी बातें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।

जैसा कि हमने आपको बताया, आज का ये दिन की जो अहमियत है वो है दूरदर्शन डे। आज ही के दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में, दूरदर्शन की नशरियात शुरू हुई थी। हम आपको बता दें, न सिर्फ दूरदर्शन डे आज मनाया जाता है बल्कि साथ ही एक और दिन भी आज ही के दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ सामाइन, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी आज ही के दिन 15 सितंबर को मनाया जाता है। बैनुल अक्वामी यौम जमहूरियत हर साल 15 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद जमहूरियत की अहमियत, अवाम की सियासी शिरकत, इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के तहफ्फुज़ के बारे में शऊर पैदा करना है। अक़्वामे मुत्तहिदा यानी यूएनओ की जनरल असेंबली ने 2007 ईस्वी में 15 सितंबर को बैनुल अक़्वामी यौम जमहूरियत, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी करार दिया। ये दिन पहली मर्तबा 2008 ईस्वी में मनाया गया। इस तारीख का इंतखाब बैनुल पार्लिमानी यूनियन की जानिब से जमहूरियत के आलमी उसूलों से मुताल्लिक एक अहम एलामिये की याद में किया गया।

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत फिल्म से लिया गया नगमा आपने सुना। गीत सुरीले गाता जा सिलसिला जारी है और साथ ही हम आपको बता रहे हैं आज के दिन की अहमियत के बारे में, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। जमहूरियत ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें इख्तदार का बुनियादी सरचश्मा अवाम होते हैं। अवाम बराह रास्त या अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमती मामलात में हिस्सा लेते हैं। जमहूरी निज़ाम में आम तौर पर आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात, क़ानून की हुक्मरानी, इजहार राय की आज़ादी, इंसानी हकूक़ का एहतराम, सियासी व समाजी मसावात, अवाम की फैसला साजी में शिरकत, जवाबदेह और शफाफ हुकूमत को बुनियादी अहमियत हासिल होती है।

पब्लिक है ये सब जानती है। ये थे गीत के बोल और इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने और फिल्म थी रोटी। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग और नैरंग में गीत सुरीले गाता जा। ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जिसमें सुरीले नगमे पेश किए जा रहे हैं और साथ ही आपको इस दिन की अहमियत के बारे में बता रहे हैं। आज आलमी योम जमहूरियत यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जा रहा है। मालूमात फराहम की जा रही हैं इसी ज़िमन में, इसी आज की अहमियत के बारे में आप तक मालूमात पहुंचाई जा रही हैं। जमहूरी इकदार को फ़रोग़ देना आज के इस दिन की अहमियत में शामिल है। शहरियों को उनके हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों से आगाह करना, आज़ाद मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की अहमियत उजागर करना,

तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल लो जमूरे, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सब

लता मंगेशकर की आवाज़ों में। हाथी मेरे साथी फिल्म के इस गीत के साथ ही सामाइन गीत सुरीले गाता जा का ये सिलसिला अब यहीं पर रुकता है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो गीत सुनवाए गए, पेश किए गए, आपने महसूस किए होंगे, पसंद किए होंगे। इसी उम्मीद के साथ सामाइन आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम नारंग में, और हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है पयाम-ए-शब। लीजिए समाप्त कीजिए।

दिल के वीरानों में घूमोगे तो भटक जाओगे, रौनक कूचे वो बाजार से आगे ना बढ़ो। हर इंसान के दिल में कुछ ऐसे दर्द, राज और आजमाइशें पोशीदा होती हैं, जिन्हें हर कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए दूसरों के बातिन का फैसला करने, उनकी निजी जिंदगी में बेजा मुदाखलत करने या छुपी हुई बातों की खोज लगाने से गुरेज करना चाहिए। इज्जत उसी में है कि इंसान दूसरों की पर्दापोशी करे, उनकी हुदूद का एहतराम करे और अपने दिल को भी अल्लाह की याद, नेक अमाल और अच्छे अखलाक से आबाद रखे। हर दिल एक अलग दुनिया है, उसके राजों का एहतराम करे, दूसरों की निजी जिंदगी में बिला जरूरत झांकने से परहेज करें। जाहिरी रौनक हमेशा अंदरूनी सुकून की अलामत नहीं होती। अपने दिल को हसद, नफरत और कीने से पाक रखें, यही हकीकी आबादी है। दूसरों के दिलों के राज टटोलने के बजाय अपने दिल को संवारने की फिक्र कीजिए, क्योंकि आबाद दिल ही इंसान की असल दौलत है।

0: स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। अब से चंद ही लम्हों में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री

0: जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तरफ में बहुत कम
1: अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकूल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलूकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
4: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said, New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls nearly 800 points. Nifty settles at 23,119. Country's overall workforce participation rate WPR increases to 52.8% in August, highest level since March this year. And in the global crude oil market, Brent crude rises by 0.4%.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स लगभग 800 अंक लुढ़का. निफ्टी 23,100

19 पर बंद हुआ। देश की कुल कार्यशक्ति भागीदारी दर अगस्त माह में बढ़कर 52.8% हो गई है, इस वर्ष मार्च के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत लगभग आधा प्रतिशत बढ़ी।

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समक्ष एके भट्टाचार्य जी विराजमान हैं. उनसे हम तमाम आर्थिक खबरों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे. लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 778 अंक यानी 1% की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 280 अंक यानी 1.2% फिसलकर 23,119 पर स्थिर हुआ. बाजार के व्यापक स्तर पर भी भारी बिकवाली देखी गई. निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 2.5% नीचे आया. शुरुआत में बाजार गैप अप के साथ खुले, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण जल्दी ही अपनी बढ़त गंवा दी. इसके बाद दोनों सूचकांक नीचे आ गए और पूरे सत्र के दौरान चौतरफा बिकवाली के कारण बाजार में गिरावट देखी गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended sharply lower today. Sensex plunged 778 points or 1% to close at 74,004. Nifty shed 280 points of 1.2% to settle at 23,119. The broader market also witnessed a sharp decline, with the Nifty Mid-Cap 100 index falling 2.1% and the Nifty Small-Cap 100 index losing 2.4%. Earlier, the markets opened with a gap up but soon realized it erased their initial gains and amid rising global uncertainties. Both the stock market indices then turned lower and remained on a downward trajectory for the rest of the session as a broad-based sell-off swept across the board.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 6%, इंडिगो 4% और टाइटन तथा बजाज फिनसर्व 3% से अधिक नीचे आए. वहीं एचसीएल टेक 4%, इन्फोसिस 3.5% से अधिक और टेक महिंद्रा के शेयर 2.3% की बढ़त के साथ बंद हुए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 26 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, the capital goods shed 4.2%, realty lost 3.9% and industrials dropped 3.6%. In contrast, information technology gained 1.9% and focused IT rose 1.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 3,381 companies declined, 1,109 companies advanced and 194 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ. भट्टाचार्य जी, जिस तरीके की हम वैश्विक अनिश्चितताएं देख पा रहे हैं, हमने देखा कि 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड वो लगभग 5% को छू करके लौटा और बंद हुआ लगभग 5% पर. ऐसे में जो उभरता बाजार है, यानी कि अगर मैं स्पेसिफिकली भारत के बाजार की बात करूं, उस पर क्या असर पड़ता आप देख पा रहे हैं?
2: देखिए, आपने ठीक ही कहा है कि जो वैश्विक स्थिति जो है
1: जी,
2: वो भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी प्रभाव डाल रहा है इस वक्त. पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वैश्विक स्थिति इसके ऊपर प्रभाव डाल रही है. हमारे देश में भी जो एक आर्थिक जो स्थिति है वो भी एक कारण है. पहली बात तो है कि जो हमारी जो कच्चे तेल की दाम जो है
1: जी,
2: वो करीबन $108 पर बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल आ गई है. ये कुछ महीने पहले ये 78, 70, 80 में मंडरा रही थी. अब उसके 80 से बढ़कर 108 में आना, और आप जानते ही हैं कि हमारी जो भारत की

0: जो जो आयात के ऊपर, तेल का आयात के ऊपर जो निर्भरशीलता है वो करीबन 80 से 85% के ऊपर है। तो उससे हमारी जो देश की जो जो फाइनेंसेस जो हैं, कंपनियों की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी प्रभाव डालता है। इसीलिए एक तो स्टॉक मार्केट में उसी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपने जो कहा
1: जी
0: कि जो वैश्विक बाजार में,
1: जी
0: पर्टिकुलरली जो अमेरिकन बाजार में जो यील्ड की जो जो जो जो 5% तक आ गई है, उसका ये एक दिन का ये आकलन नहीं है, ये बहुत सालों से जो सरकारों की फिस्कल एक्सेसेस जो हो रही थी उसी का कारण हम देख रहे हैं कि जो यील्ड मतलब जो बॉन्ड के जो दाम जो हैं वो गिर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो FII जो है उनको एक इजी एक ऑप्शन मिल रहा है, वो इजी ऑप्शन वो स्टॉक मार्केट से, हमारे स्टॉक मार्केट से बाहर जाकर अपने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड पेपर्स में वो अपने आप को निवेश कर रहे हैं, क्योंकि दाम नीचे हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो उनकी जो रिटर्न्स जो हैं वो अचानक ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रही हैं। और तीसरा बात जो है मैं अभी कहता हूँ
1: जी
0: कि जो हमारी जो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन जो है, मुद्रास्फीति जिसे हम कहेंगे,
1: जी
0: वो CPI का नंबर अभी कल परसों आया था, उसमें अगस्त का नंबर 4.8% में आया है।
1: जी
0: उसकी यही दर्शाता है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल जो है और WPI थोक मूल्य जो है वो करीबन 9% के ऊपर है। तो 9% थोक मूल्य के ऊपर है और खुदरा मूल्य में 4.8% में है। तो इसको दिखाकर जो इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर अक्टूबर में जो जो एक डर कहिए या एक आशा थी या निराशा थी कि इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ जाएंगे, वो भी है। और कल फेड का भी निर्णय है कि वो किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए। बहुत लोगों का मानना है कि कल ही शायद फेड अपना इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ा दे। तो उससे क्या होगा कि जो सारी जो वैश्विक स्थिति और भारतीय आर्थिक स्थिति और मार्केट की जो आउटलुक जो है उसमें एक एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, उसी को दर्शा रहा है आज का स्टॉक मार्केट।
2: AKB, you mentioned about how important the interest rates are because of how the RBI will possibly react in its MPC meeting on October 7. And if the repo rate goes up, clearly that would also mean that lending rates would go up and the valuation of banking stocks is also affected. Today, the big hit in the domestic stock market, since we've already spoken about global uncertainty and how inflation is being linked to costs and business performance, Bank Nifty took a hit. It went down by 812 points. Is that likely to continue? Because banking performance has been very good as far as their corporates are concerned. Their net interest margins have improved. NPAs have come down. Why is it that banks took a hit today?
0: Well, let me first clarify a couple of points that you raised. When the first point that you mentioned was about what was your first point? The first point.
2: So I asked you about Bank Nifty, which took a hit today, and RBI's monetary policy meeting will take place, where there is the
0: Reserve Bank
2: assumption
0: of,
2: that the you know it'll go up by 25 basis
0: no,
2: points.
0: No, the Reserve Bank of India's problem is that the liquidity in the economy is very, very high because of $100 billion of inflows coming in. So if the government and the RBI have to tame the inflation, it has to control the liquidity. Now, to control the liquidity, it must raise interest rates. So therefore, inflation is an outcome of that. So the RBI will probably be forced to review its interest rate stance also to manage the liquidity. As far as the Bank Nifty is concerned, Bank Nifty is today there is

आशा भोसले की आवाज में अजीज कश्मीरी के शब्दों और ओपी नैयर के संगीत में पिरोया हुआ ये गीत था फिल्म ये रात फिर ना आएगी से। वैसे गीत मेरे मनमीत वाली रात तो फिर से आ चुकी है मेरे यानी कि अभिनीत के साथ। तो चलिए जल्दी से सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिवाली की रात से तलत महमूद का गाया हुआ, जिसे लिखा नक्श लालपुरी ने और संगीतकार हैं स्नेहल भटकर।

1973 में आई फिल्म जोशीला से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ ही हमारा भी अपने घर का रास्ता देखने का अब वक्त हो चुका है। तो आज के गीत मेरे मनमीत के साथ ही मुझे यानी कि अभिनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा। आगे आप सुनेंगे समाचार और हमेशा की तरह सुनते रहिए एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। अपना रखिए अच्छे से ध्यान। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए पाकिस्तानी के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तौफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्तियों से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। यह 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में कार्यक्रम में

अ सेंचुरी ऑफ सर्विस द आरएसएस इन 100 एक्ट्स ऑफ सेवा नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया। ये किताब तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर्य राजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 100 वर्ष की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दर्शाती है। दूसरे टी20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच में जीत हासिल कर ली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। और आज निशिगंधा के बहाने हम बात करेंगे सपनों की। सपने जो हम अक्सर देखते हैं, कभी खुली आंखों से, कभी बंद आंखों से। ख्वाब प्यारे लगते हैं, जब हकीकत से मिलते हैं तो थोड़े भारी लगते हैं। खैर, ख्वाबों के बारे में, सपनों के बारे में बहुत से शेर शायरी, बहुत सी बातें कही गई हैं। आज हम भी उन्हीं में से कुछ बातों को आपस में साझा करेंगे।

ये सपना वही है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ सपने हम सब देखते हैं और भर भर के देखते हैं। खुली आंखों से तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सपने देखते हैं। वैसे भाई सपने अगर माना जाए तो दो तरह के होते हैं। वही जो मैं कह रही थी कि एक वो जो हम सोते समय आंखों से अचेतन मन में देखते हैं और दूसरे वो जिन्हें हम खुली आंखों से अपने भविष्य को संवारने के लिए देखते हैं। और दोनों ही तरह के सपने हम सबके जीवन, उसकी मानसिकता और कहीं ना कहीं वो हमें प्रेरित भी करते हैं। सोते समय आने वाले सपने हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक और कह लें कि जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जो हम जागते हुए देखते हैं वो हमारी सोच के कारण हम उन सपनों को देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम देखते हैं।

बात आज निशिगंधा में हम कर रहे हैं सपनों की. सपने कई बार बहुत अजीब सपने आते हैं. ऐसी ऐसी चीज़ें सपनों में आती हैं जिनके बारे में हम दिन में क्या कभी बात ही नहीं करते, कभी सोचते भी नहीं. ऐसी जगह हमें सपनों में दिख जाती है और कई बार हमें लगता है हम इसी घर में थे, यहीं थे, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लगता है. ये भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जानने वाले से बात कर रहे थे सपनों में, लेकिन वो जानने वाला उसकी शक्ल वैसी नहीं थी जैसी वो हकीकत में नज़र आता है. तो सपनों की दुनिया भी बहुत अजीब है. कई बार इन्हीं सपनों में हम उन बिछड़े हुए लोगों को भी देख लेते हैं जिनसे बिछड़े ज़माना हो गया है.

तो बहुत सारे चेहरे हमें सपनों में भी मिल जाते हैं, जिन्हें हम हकीकत की जिंदगी में ढूंढते रह जाते हैं। मनुष्य का जीवन जो है ना, वो आकांक्षाओं से भरा हुआ है, और ये सपने ही हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए सपनों का होना भी बेहद जरूरी है। सपनों के बिना हमारा जो जीवन है ना, वो बिल्कुल नीरस हो जाता है, उसका उद्देश्य ही नहीं रहता। जब कोई सपना होता है तो हम उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास भी करते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, खिलाड़ी बनना है, वैज्ञानिक बनना है या सिंगर बनना है, तो उसका भी तो वो सपना देखता है ना, और वही सपना उसे प्रेरित करता है जल्दी उठने के लिए, रियाज करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए। और जब वो ये सारी मेहनतों से गुजरता है तो वो निखर जाता है और वो बनता है जो वो बनना चाहता था। तो ऐसे ही खूबसूरत सपने सजाते रहिए और जीवन को आगे, निरंतर आगे बढ़ाते रहिए।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

पर रात्रि के 12:37 और हो गए हैं पूरे 27 सेकेंड। आप हैं माधुरी के साथ निशिगंधा के इस सफर में और आज हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की। जी हाँ, ख्वाब तो हम सभी देखते हैं और तरह तरह के देखते हैं। कभी ऐसी ऐसी खूबसूरत जगहों पर जाने के भी ख्वाब देखते हैं कि उनके बारे में सुना है कि धरती पे ऐसी जगहें जन्नत हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना, मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। मेरा भी यह ख्वाब है कि कभी मैं कश्मीर जाऊँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कश्मीर होकर आए होंगे, लेकिन हाँ, मेरा ख्वाब अभी ख्वाब है।

भाई कश्मीर का सपना तो है, चलिए कभी अगर यूं ना जा सके तो सपने में ही कश्मीर चले जाएंगे। चलिए कोई नहीं, और हम बात कर रहे हैं आज निशिगंधा में सपनों के, सपने उड़ान भरते हुए सपने, बहुत प्यारे खूबसूरत सपने। लेकिन कई बार ज़िंदगी की हकीकत हमें डराती भी है, हमारे सपने टूटते भी हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के ख्वाब हम देखते हैं और कई बार अच्छे अच्छे ख्वाब भी टूट के चकनाचूर हो जाते हैं। और जब ख्वाब टूटते हैं ना, तो सिर्फ ख्वाब ही नहीं टूटते, हम भी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी है दोस्त, इस बिखराव को भी हमें समेटना होता है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। जी हाँ, इसी तरह के हौसले के साथ हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और हाँ, ख्वाब देखना नहीं छोड़ना है, चाहे हमारे ख्वाब हमें रुला के ही क्यों ना जाएं।

सपने टूटते हैं, हम ना उम्मीद होते हैं और सपने हमें इसी तरह रुलाते हैं। लेकिन सपने हमें जीवन की राह भी दिखाते हैं, सपने हमें रोमांटिक भी बनाते हैं। और अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ ना, उसके बिना सपनों की ये महफिल कैसे कंप्लीट हो सकती है। जी हाँ, ड्रीम गर्ल की बात करें, वो गाना तो मैं आपको सुनाऊंगी ही, उससे पहले कुछ और भी कहूँगी। और ये देखिए, चंद लाइनें हैं, बड़ी प्यारी हैं, आप तक पहुँचा रही हूँ। कि काश कोई हम पर भी इतना प्यार जताती, पीछे से आकर वो हमारी आंखों को छुपाती, सीने से लगाती, मुंह बनाती, पर बेगाने राहों पर इस तरह छोड़ कर न जाती। काश कोई हम पर भी, कोई हमारी भी नींदों में आती, ख्वाबों में आती, मुझे चिढ़ाती और लड़के मनाती, दर्द को वो मेरे कम कर जाती। काश कोई हमारे भी ख्वाबों में आती। तो चलिए, इन सब पंक्तियों के बाद अब वो प्यारा गीत, जो ड्रीम्स की बातें हो रही हैं, तो ड्रीम गर्ल को तो आना ही पड़ेगा।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

कोई सपने तो ऐसे ही होते हैं, आंखों में आते हैं, समाते हैं, चले जाते हैं। कई लोग अपने ख्वाब पूरे करने के लिए बस अपनी रात भी गंवा बैठते हैं, और बहुत सारे हमारे अभी भी साथी जो हमें सुन रहे होंगे, हो सकता है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाग रहे हों। तो चलिए, रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, लेकिन निशे गंधा का ये सफ़र यहीं हम समाप्त करेंगे इस गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गैला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से

0: व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। औषधि विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPR, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों के सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, केरल और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बिहार में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Sandhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Ministry yesterday said that the payments to the merchants P2M up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. The Ministry said consequently about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. NPCI has said that a revised UPI

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत सुहाने लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। और गीत सुहाने में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्यारे प्यारे पुराने गाने, ओल्ड क्लासिक्स। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, एकदम चिपक के बैठ जाइए और इन प्यारे प्यारे गीतों को हम पहुंचाएंगे आप तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, और ये जो गीत है ये हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म सूरज से।

ये प्यारा सा गीत हम आपके लिए लेकर आए थे फिल्म सूरत से, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा।

जी हाँ, ये हवा ये नदी का किनारा, इतना प्यारा सा गीत हम लेकर आए थे आपके लिए फिल्म घर संसार से, आशा जी और मन्ना डे के आवाज में, संगीत रवि साहब का।

ये दर्द भरा गीत आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब से। लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में और संगीत दिया नौशाद साहब ने। अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म पालकी से।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 1:33 और हो गए हैं पूरे 26 सेकंड। ये सफ़र है गीत सुहाने का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना था, वो था फिल्म पालके से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। और अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये गीत फिल्म गहरा दाग से।

ये बहुत ही प्यारा सा गीत है, जब भी सुनते हैं एकदम वैसे ही दिल को छूता है जैसे लगता है आज ही पहली बार सुना है। फिल्म गहरा दाग से ये गीत सुन रहे थे आप, मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में, संगीत रवि साहब का और बोल लिखे शकील बदायूनी ने।

फिल्म जिंदगी से ये गीत सुना आपने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा था ये गीत और बोल लिखे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब ने। अब अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म जिंदगी और ख्वाब से।

संगीत और फिल्म थी हमराही। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है गीत सुहाने का। अगला सुहाना सा गीत है फिल्म संगम से आप सभी के लिए।

ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। खूबसूरत गीत फिल्म संगम से सुना आपने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत, बोल लिखे शैलेंद्र।

और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म तलाश से। गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ, ओल्ड मेलोडीज। तो गीत सुहाने से ये आखिरी जो नगमा है आज की रात का आप तक पहुंच रहा है फिल्म तलाश से। लता जी, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में संगीत दिया है एसडी बर्मन साहब ने।

और इसी के साथ गीत सुहाने की ये महफिल यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों और लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत में हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण कल शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाना, नई चुनौतियों का सामना करना और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। सैन्य अभ्यास का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। औषध विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू और विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। दूसरे टी20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said, New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. The Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The ministry yesterday said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants will also remain free. The ministry said consequently about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from 15th of next month while keeping UPI free for consumers. Indian parliamentary delegation is participating in the 69th Commonwealth Parliamentary Conference CPC being held in Cape Town, South Africa till the 19th of this month. The delegation is being held by Deputy Chairman of Rajya Sabha, Harivansh. The conference is also being attended by 32 presiding officers and 18 secretaries from state and union territories, legislatures of India, who are members of the Commonwealth Parliamentary Association. Rajya Sabha Secretariat informed that Mr. Harivansh

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और ये वक्त है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। तो रात सुरमई को आगे बढ़ाने के लिए हम शुरू करते हैं ये गीत, और ये गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म कर्ज से।

एक दूसरे की उम्रें हम पूछा करते थे और वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो जो पल है ना, कहीं वक्त की शाख पर ही अटके रह जाते हैं। सच में ये जो उम्र होती है ना जवानी की, 16, 17, 18 साल, वाह क्या बात होती है, बेफिक्री की उम्र होती है। और हर उम्र में ख्याल आता है इस उम्र का। तिनका उड़ान पर है हवाओं के साथ साथ, मैं चल रहा हूँ सबकी दुआओं के साथ साथ। वक्त सबका आता है, मन छोटा नहीं करना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि देर सवेर हो जाती है, और बातों ही बातों में ये बात भी कि तिनका तिनका कांटे तोड़े सारी रात कटाई की, क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात जुदाई की।

अक्सर दिल बड़ा मचलता है, बहुत कुछ कहना होता है पर कहने से डरता है। धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। जी हाँ, पहले प्यार की बात ही अलग होती है और बातों में भी क्या क्या अलग होता है, ये बताने वाला है हमारा अगला गीत।

पहले पहले प्यार की बहुत सारी बातें हैं जो गाहे बगाहे याद आ जाती हैं। और सच तो ये भी है कि सबके नसीब में ये पहला प्यार थोड़े ही होता है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं दिल की चोरी तक। जी हाँ, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया, दहर में मैं खाक बसर ही रहा, उम्र को इस तौर बसर कर गया। और दिल ही नहीं है मंजिले सीना में अब, यहां से वो बेचारा सफर कर गया, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया। और ये पंक्तियां लिखी मीर तकी मीर साहब ने, और आप तक पहुंचाई हैं इस नाचीज ने, और अगला गीत भी आप तक पहुंचा रही हूं।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है रात सुरमई का और रात्रि के 2:32 और हो चुके हैं पूरे 48 सेकंड।

रात सुरमई के इस सफर में आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत, और उम्मीद करती हूँ कि रात के इस सफर में आपके अच्छे हम सफर साबित होंगे ये गीत। वफा तुझसे ए बेवफा चाहता हूँ, वफा तुझसे ए बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ।

लफ्ज बिखर जाएंगे होठों से तबस्सुम की तरह, एहसास की बातें हैं ये, दिल थाम के सुनिए।

आगे चलें या पीछे चलें और चलते रहें, लेकिन रात सुरमई का ये सफ़र अब कह रहा है कि यहीं इसको विराम दिया जाए। तो आखिरी गीत आपकी नज़र करते हुई, गुरेज़ पा है नया रास्ता किधर जाएं, चलो कि लौट के हम अपने अपने घर जाएं। इसी के साथ दीजिए विदा माधुरी को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित होगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैस प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: औषध विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:11:06। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

जानते हैं दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि अगर कोई दूर है तो उससे हम प्यार नहीं करते। कई बार इंसान बहुत दूर होता है लेकिन उसकी याद हर पल हमारे साथ रहती है। फासले सिर्फ कदमों के होते हैं, दिल के नहीं। सच्चा प्यार तो वो है जिसमें सामने न होकर भी कोई दिल के बहुत करीब महसूस हो, उसकी एक आवाज चेहरे पर मुस्कान ले आए और उसकी याद अकेलेपन को भी खूबसूरत बना दे। तो चलिए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

कभी कभी प्यार में सबसे खूबसूरत एहसास होता है किसी की आवाज का इंतजार। दूर बैठे इंसान को बस इतना भरोसा है कि वो मुझे याद कर रहा होगा, मुझे पुकार रहा होगा। मोहब्बत में इंतजार अच्छा लगता है, लेकिन जब इंतजार बहुत लंबा हो जाए ना, तो दिल की बेचैनी भी बढ़ने लगती है। फिर मन करता है कि बस एक आवाज आए और कोई हमें पुकार ले।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 3:28 और 54 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, मोहब्बत में इंतज़ार शायद सबसे खूबसूरत एहसासों में एक है। जब किसी खास इंसान के लौटने की उम्मीद दिल में होती है ना, तो वक्त चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, दिल उसका इंतज़ार करना नहीं छोड़ता। कभी कभी सामने वाला पास नहीं होता, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, मुलाकात भी नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल कहता है कि वो आएगा जरूर, क्योंकि सच्चे प्यार में दूरी हो सकती है लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।

0: दोस्तों, कभी कभी प्यार में सबसे प्यारी शिकायत यही होती है कि सामने वाला हमसे बातें तो करता है लेकिन दिल की बात नहीं कहता। उसकी बातों में अपनापन भी महसूस होता है और कभी कभी लगता है कि शायद ये सिर्फ हमारी उम्मीद है। मोहब्बत में यही तो उलझन है। कभी उसकी एक छोटी सी बात दिल को यकीन दिला देती है कि प्यार सच्चा है और यही खामोशी मन में सवाल खड़े कर देती है कि क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है या यूं ही बातें करता रहता है। तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही एक नगमा।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

कभी कभी मौसम भी दिल की बात कहने लगता है। बादलों का यूं घिरना, हवा का कुछ गुनगुनाना और किसी की याद का अचानक दिल में उतर आना, शायद मोहब्बत का असर कुछ ऐसा ही होता है। जब दिल किसी के ख्यालों में खो जाए तो बादल भी दीवाने लगते हैं और हवाएं भी कोई प्रेम संदेश लेकर आती हुई महसूस होती है। यही तो पुराने गीतों की खूबसूरती है, साधारण से मौसम को भी एक खूबसूरत एहसास में बदल देना। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार, 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों की तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान में खतरा है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। मेघालय कैबिनेट ने कल मेघालय फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 में बदलावों को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मेघालय को फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कॉनराड के सगमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हमने प्रोत्साहन को अधिक लक्षित बनाने के लिए कुछ योग्यता शर्तों में सुधार किया है। दिल्ली

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 4:10 और 15 सेकंड। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अरुणिमा कार्यक्रम में शुरुआत हो चुकी है भक्ति में प्रस्तुति की और आज मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों जब मन बहुत थक जाता है ना तब दुनिया की भागदौड़ के बीच कहीं सुकून नहीं मिलता, तब इंसान अपने आराध्य की शरण में चला जाता है। वहां न कोई शिकायत रह जाती है ना कोई सवाल, बस मन में एक विश्वास होता है कि मेरे कान्हा सब देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं।

दोस्तों, जब जिंदगी में सुख के पल आते हैं ना, तो हमारे आसपास लोगों की कमी नहीं रहती। खुशियां बांटने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है ना, तब मन भीतर से टूटने लगता है। तब अक्सर वही भीड़ धीरे धीरे कम हो जाती है। शायद इसलिए जिंदगी हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली पहचान खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में होती है। जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ आपका हाथ थामकर खड़ा रहता है ना, वही आपका सच्चा दोस्त होता है। और जब इंसान को लगता है कि अब कोई साथ नहीं है, तब ऊपर वाले पर विश्वास उसे संभालता है। आखिर सुख और दुख दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, और हमें बस हर परिस्थिति में अपना हौसला बनाए रखना चाहिए।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:27 और अरुणिमा कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों, राधा और मीरा दो नाम, लेकिन प्रेम की दो अलग अलग तस्वीरें। राधा का प्रेम कृष्ण में अपना संसार देखता है, तो मीरा का प्रेम कृष्ण को ही अपना संसार मान लेता है। एक ने प्रेम को जिया और दूसरी ने प्रेम को अपनी भक्ति बना लिया। कभी कभी जिंदगी में भी कोई रिश्ता ऐसा होता है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं ही सब कुछ कह देती हैं। सच्चा प्रेम शायद वही है जिसमें पाने से ज्यादा समर्पण होता है और साथ होने से ज्यादा दिल में बस जाने की चाह होती है। इन्हीं भावनाओं को खूबसूरती से पिरोता फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, जिंदगी की राह में हर मोड़ पर कोई हमारे साथ चले ये जरूरी तो नहीं। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है। भीड़ साथ हो तो सफर आसान लगता है, लेकिन अकेले चलना ही हमें अपने भीतर की ताकत से मिलवाता है। कभी पीछे मुड़कर देखिए ना, जो लोग रास्ते में मिले कुछ पल साथ चले और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। शायद यही जिंदगी है, मिलना, बिछड़ना और फिर अकेले चलते रहना।

कहते हैं कि प्रेम जब सच्चा हो ना तो उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं होती, बस एक एहसास ही काफी होता है। और कृष्ण की बंसी की धुन में तो जैसे सदियों से उसी प्रेम की पुकार बसी है। बंसी बजती है तो राधा का नाम याद आता है, और राधा का नाम आते ही मन में एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यही तो सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं बल्कि समर्पण का नाम है, जहां दूरी भी रिश्ते को कम नहीं करती बल्कि प्रेम को और गहरा कर देती है।

सच यानी सत्यम, कल्याण यानी शिवम और सुंदरता यानी सुंदरम, इन तीन शब्दों में जैसे जीवन का पूरा दर्शन समाया हुआ है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती तो उस सोच में होती है जो किसी के जीवन में प्रेम, विश्वास और अपनापन भर दे। कभी कभी हम बाहरी सुंदरता को देखकर ठहर जाते हैं, लेकिन समय हमें सिखाता है कि असली सुंदरता मन की होती है, भावनाओं की होती है।

धन दौलत और सुख सुविधाएं इंसान को कुछ समय के लिए खुशियां दे सकती हैं, लेकिन मन का सुकून तो तभी मिलता है जब दिल में प्रभु का नाम बस जाए। मीरा ने भी तो यही कहा था कि उन्हें संसार की दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो अपने श्याम का प्रेम ही सबसे बड़ा धन लगता है। कि कितनी खूबसूरत बात है ना, जब मन में भक्ति का दीप जलता है तो छोटी छोटी खुशियां भी अनमोल लगने लगती है। प्रभु का नाम ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना समय इसे कम कर सकता है।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही मीना चौहान को अरुणिमा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे

0: वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लोगों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस तरह लोगों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन प्रभावित नहीं होगा। 2,000 रुपये से ज्यादा के लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली की में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये सम्मेलन 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में RSS नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिल सिलाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत अमरीका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली विदेशी परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। मेघालय कैबिनेट ने कल मेघालय फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मेघालय को फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने प्रोत्साहन को ज्यादा लक्षित बनाने के लिए कुछ योग्यता शर्तों में सुधार किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचयन जनभागीदारी अभियान का गीत जारी किया है। इस गीत को प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। ये गीत जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को संगीत में आवाज देता है। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11:07 भोर सुहानी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान, कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हरियाली हो, खुला आसमान हो और सामने से जाता हुआ कोई रास्ता, बस मन करता है चलते ही जाएं। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है ना, रास्ते पहले से तय नहीं होते, लेकिन चलते रहने से मंजिल जरूर मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की।

फूल का काम है खिलना और इंसान का काम है मुस्कुराना। हालात जैसे भी हो, अपने अंदर की खुशी को मुरझाने मत दीजिए, क्योंकि एक मुस्कान कभी कभी पूरे दिन का रंग बदल देती है। तो चलिए सुनते हैं ये मुस्कुराता हुआ गीत।

दोस्तों, कुछ बातें कागज पर लिखी जाती हैं और कुछ दिल में। और जब दिल की बात फूलों के रंगों से लिखी जाए ना, तो उसका जवाब भी शायद एक मुस्कान ही होता है। तो मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM गोल्ड पर कार्यक्रम भोर सुहानी।

दोस्तों, पहाड़ों की अपनी ही एक भाषा होती है। खामोश रहते हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं, और पहाड़ हमें एक और बात सिखाते हैं। ऊंचाई चाहिए तो चढ़ाई से घबराना नहीं चाहिए।

दोस्तों, कभी सुबह का आसमान देखा है आपने गौर से? कभी पहाड़ों को, कभी फूलों से, तो कभी पूरी प्रकृति को। मन में सवाल आता है, आखिर इतनी खूबसूरत दुनिया किसने बनाई? इसी सवाल को गीत में ढालता हुआ एक खूबसूरत नगमा आपके लिए।